सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 6 जुलाई 2026 सोमवार, अषाढ़ कृष्ण पक्ष षष्ठी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:29 पर।

हमारी बोलों की कीमत अवश्य है, लेकिन बोलों के साथ कर्म जुड़ जाता है तो वाकई उसकी महत्ता बन जाती है। भक्त जहां शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं प्रयास करते हैं कि बोलों के रूप में जो नक्शा बना है उसमें अमल का रंग भर करके मन वचन कर्म से इस जीवन के सफर को तय किया जाए।

यही अवसर मोहि आन उबारो, लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हर

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप अपने रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz पर सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती श्वेता शाह से की गई बातचीत। आपकी बातचीत का विषय है योग, मानसिक स्वास्थ्य व पोषण विधि। बातचीत करेंगे आज के मेहमान से भारत सोपोरी। नमस्कार सभी श्रोताओं का आज के स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है जो हमारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वस्थ का मतलब बस बीमार नहीं होना नहीं होता, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं का सम्मिलित होता है जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं। स्वस्थ चर्चा कार्यक्रम के श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अंबाला के योग एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग कोच श्रीमती श्वेता शाह जी, जो 22 साल का अनुभव रखते हैं योग, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण विधि में। स्वागत अभिनंदन मैडम श्वेता शाह जी आज के कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा में FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता स्टूडियो में।
2: मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और यह मंच दिया। आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ, चाहे वो इसमें से मेरी एक ही बात पकड़ पाए, फायदा हो पाए। यही मेरी आज इच्छा है यहाँ पर आने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज का साक्षात्कार। आपसे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे योग, मानसिक स्वास्थ्य व पोषण के बारे में। पहले आपसे जानना चाहेंगे योग का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कितना है, इसके समय और क्रियाएं क्या है जो हम सबके लिए लाभदायक हैं।
2: योग बेसिकली अगर हम शाब्दिक रूप से भी देखें, योग का अर्थ है जोड़ना, यूनियन। तो हम इस बात को जरा ध्यान से समझें कि जब हमारा मानसिक शारीरिक समन्वय होता है, हम उसको जोड़ पाते हैं, हम उसके साथ बराबर मिलकर एक समान होकर के काम कर पाते हैं, जी पाते हैं, सही मायने में हम उसे ही योग कहते हैं
1: जी।
2: और इसको हम कर सकते हैं, बहुत सारे आसन हैं, और एक साधारण भाषा में या एक साधारण अर्थ में हम समझें तो लोग समझते हैं ये एक आसन है, ये एक क्रिया है। उससे बहुत ज़्यादा है, वो एक शुरुआत है जिससे आप अपने देह को तैयार करते हैं, उसको शारीरिक रूप से गठिला बनाते हैं, इस लायक बनाते हैं कि आप आगे आने वाली बाकी सारी जो हमारी शास्त्रों के द्वारा दी गई स्पिरिचुअल जर्नी है, उन मेडिटेशंस को, उस ध्यान की अवस्था को, राजयोग को प्राप्त कर सके। तो ये जो है एक बहुत ही इलैबोरेट वर्ड है, इसमें कोई अंत ही नहीं है। तो हम इसको अगर लें कि बेसिक शब्दों में कि हमें अगर आसन का समय चाहिए तो बिल्कुल मान करके चलें कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा आपको कुछ ना कुछ आपने खाया हुआ नहीं होना चाहिए, मिनिमम।
1: यानी कि खाली पेट ही योग करना चाहिए।
2: बिल्कुल, उसमें कुछ आसन है जो अपवाद की तरह है, जो डाइजेशन के लिए ही अच्छे हैं, जैसे वज्रासन है,
1: ठीक है,
2: कुछ उनको छोड़ दिया जाए जो आपको करना ही खाना खाने के बाद ज्यादा इफेक्टिव है। उसके अलावा व्हाट वी एक्सपेक्ट, और हमारे जो पुराने शास्त्र हैं, देखा जाए तो योग पतंजलि से जहां से आया है वो ये कहता है, जो अब साइंस भी प्रूव कर रही है कि एकादशी का जो व्रत है वो जापानीज ने पूरा रिसर्च करके बता दिया है कि हाँ, उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं नियर अबाउट आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटों के बाद अगर आप प्रॉपर फास्टिंग करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी बॉडी में रीजनरेशन के, दोबारा से बनने वाले स्टेम सेल्स जो आपकी बॉडी को रिवाइव करते हैं, और बड़ा ही ल्यूक्रेटिव वर्ड है, बड़ा ही ऐसा शब्द है जो सबको बड़ा प्यारा लगता है, एंटी एजिंग, वो वाला जो काम है ना वो तब शुरू होता है। तो ये मान करके चलें कि इन आसनों को, इन क्रियाओं को करने के लिए अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, उसके लिए भोजन तो बिल्कुल नहीं चाहिए।
1: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि अपने आप को तैयार करना है और इन क्रियाओं को करने से जो स्वास्थ्य लाभ उनको मिलेगा, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कैसे करें जो पहली बार करने वाले हैं।
2: हाँ, तो इस पर हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीम बनी हुई है कि जब तक हम कुछ खाते नहीं है तो दिमाग नहीं चलता है, खा लेते हैं तो नींद आ जाती है।
1: ठीक है,
2: तो इस बात से हमें समझ में आता है कि हर चीज को मॉडरेशन में करें, बैलेंस होकर के करें, उतना करें जितना रिक्वायर्ड है। खाने की जगह हमारी उतनी ही है। कोई भी इंसान अगर अपनी मुट्ठी को बांध ले तो हमारे पेट का साइज बस उतना ही होता है, और उसके ऊपर हम जितना खाते हैं तो वो पेट फैलता जाता है। और फिर आजकल इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, पेट को जी काटा जा रहा है, उसे छोटा किया जा रहा है, रीसाइज किया जा रहा है। हमारी कैपेसिटी सिर्फ एक मुट्ठी ही है। और बिल्कुल मान करके चलें, जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद जो मिक्सी चलाई जाती है, अगर उसमें गुंजाइश ही ना हो, आपके जो बाइल जूसेस हैं, आपके पेनक्रियास का काम है, लिवर का काम है, हर दूसरा पेशेंट हम सुनते हैं लिवर कैंसर हो गया है, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तो पहले तो खान पान सबसे प्राइम चीज है कि कितना खाया जाए और क्या खाया जाए। कुछ एक या दो चीजें, जैसे इंसोमेनिया बहुत पॉपुलर है, नींद ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन की भी, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है शरीर में मैग्नीशियम का कमी होना
1: जी।
2: तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हर चीज खाइए लेकिन बैलेंस तरीके से खाइए। और दूसरी चीज, रात को जो हमारा पहला गुरुकुल सिस्टम था, संध्या समय बाद ना खाएं, कम खाएं। और अगर उसके लिए आपको मोटिवेट करना चाहूं तो एक बात कहूंगी कि जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो 7 बजे के बाद कुछ खाते नहीं है। उसका कारण यही है कि जैसे जैसे सूर्य जो आपके शरीर में जठराग्नि बन करके आपके नाभि चक्र में बैठता है
1: जी,
2: उसका कार्य जो है वो क्षीण और बिल्कुल कम होता चला जाता है। तो वो आप इतना सक्षम ही नहीं होता है कि आप जितना उसमें डाल रहे हैं कि वो उसे पूरी तरह से पचा पाए। तो रात का जो खाना है, या तो ना, या कम, या 7 बजे के बाद नहीं, ये होना चाहिए। कभी खा लिया, आप शादी में गए, सोसाइटी में रहते हैं, वो एक अलग बात है। कोशिश करें ऐसे रखेंगे तो फिर वो बैलेंस्ड जितना अमाउंट है बॉडी ले लेगी।
1: श्वेता जी, जो आपने शुरुआत करी इस कार्यक्रम की, आपने जो भी कहा वो हमारे धर्म शास्त्रों के साथ जुड़ा है, खास करके योग। जो सरल भाषा में हम योग समझते हैं, मुझे ये समझ आ गया कि सिर्फ योग एक क्रिया करना नहीं है, योग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हमें क्रिया के साथ साथ अपने आहार का संतुलन और समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए, और जो आपकी बातें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये श्रोताओं को किसी न किसी तरीके से फायदा करे। श्वेता जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, योग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कौन सा योग आसन है जो तनाव को कम करता है?
2: मुझे लगता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को। अगर हम बात करें मानसिक, जो इंसान का इस समय करंट मेंटल स्टेटस है
1: जी,
2: वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड है। उसकी जो बैलेंसिंग है, जो शब्द हम बार बार बात कर रहे हैं योग, वो सही स्थान पर नहीं है
1: जी।
2: उसका कारण है क्योंकि हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी गैजेट्स में रह रहे हैं। अगर हम अपने आसपास देखें, हमारे पास नेटवर्क टावर्स हैं
1: जी,
2: आपका जो खाना है वो आपके बहुत ही कॉमनेस्ट चीजें हैं, एयर फ्रायर्स में बन रहे हैं, माइक्रोवेव में बन रहे हैं
1: जी।
2: कभी हमने इस चीज को सोचा ही नहीं है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म कैसे होता है। वो कहीं और से हीट नहीं लाता है, उस खाने की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको डिसहार्मनी में रखता है। पहले वो उसको आपस में टकराता है, उससे जो हीट जनरेट होती है उससे खाना गर्म होता है। तो मतलब ये माने कि किसी दुश्मन को भी हमें उसे गिफ्ट नहीं करना चाहिए। वो जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ है ही नहीं, वो आपको डिसऑर्डर ही देगा। वो हमारे पुरानी कहावतें हैं ना, हम जैसा खाते हैं, जैसा खाया है वैसा ही हमारा तन बनेगा, वैसा ही हमारा मन बनेगा
1: जी।
2: तो अगर हमारा जो खान पान का तरीका है, ये सब चीजें हैं, उनकी वजह से जो हमारा जो मेंटल बैलेंस, जो हमारा मानसिक स्थिति को होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं है, और चाहकर भी नहीं हो पाएगा जब तक हम उसको कंट्रोल ना करें, रेगुलेट ना करें। हर 2 मिनट बाद फोन उठा करके चाहे रील्स देने की इच्छा है, या हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसकी कितनी प्राइस देने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपनी शांति को कुछ देर की मोमेंट्री प्लेजर के लिए छोड़ सकते हैं, तो हम उसको उतनी देर के लिए कंटिन्यू करें, नहीं तो उसको वहीं थोड़ा रेगुलराइज करें।
1: तो क्या नहीं है ऐसा कि जो बहुत पहला समय था जहां पर ये गैजेट्स हमारे पास नहीं होते थे और तब हम समय से अपना काम भी करते थे और समय से खान पान भी करते थे और सोते भी थे, तो क्या इन चीजों का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में?
2: बहुत ज्यादा। आप ये देखिए, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अभी पीछे सचिन तेंदुलकर का भी एक आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने बताया कि वो शायद साउथ में किसी जगह रिजॉर्ट है जहां पर पुराने तरीके से रहने के लिए उनको एक हफ्ते का स्टे दिया गया, जिसमें पूरा सस्टेनेबल हाउस है, उसमें सब कुछ जैसा पहले, फ्रिज भी जो मिट्टी के फ्रिज नीचे जिसमें सामान रख सकते थे, सस्टेन कर सकते थे, इको फ्रेंडली जिसको हमने अब नया टर्म दिया है, वैसे वाले घर पुराने, उस तरह से वो रहने की प्रोविजन को इंजॉय करते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर आपको मिल कहाँ रही है। रिसर्चर्स बता रही हैं, दिल्ली में जब हम बार बार बात करते हैं कि लंग फिजिशियंस अपने मुंह से बोल रहे हैं कि आज से 25 साल पहले जब हम ऑपरेट करते थे तो लंग्स का कलर होता था पिंक, गुलाबी। अब हम जब भी करते हैं तो लंग्स निकलते हैं ब्लैक, ब्लैकिश टोन में। इट्स अ जर्नल ट्रेंड, ये नहीं है कि एक या दो,
1: चाहे वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हैं तो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से है। और बात यहां पर आती है कि हम उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी चॉइस है। हम डिस्कम्फर्ट लेना नहीं चाहते, तो वो प्राइस कौन पे कर रहा है? हम ही पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो चीजें हमें बेनिफिट के लिए मिली हैं, क्या हम उसको सही सुचारू रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? वो डिस्क्रिशन, वो जो सही डिसीजन लेने की पावर है ना, वो हम विल पावर लेस होने की वजह से लूज कर गए हैं। कहीं ना कहीं हमें फिर से स्ट्रांग होकर विल पावर दिखानी चाहिए कि जितनी जरूरत है उतना ही उस चीज का इस्तेमाल किया जाए।
1: एक योग एक्सपर्ट और मानसिक स्वास्थ्य एक्सपर्ट होने के नाते जो आपने बात बताई, इसको हम अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, हम यहां अंबाला की बात करेंगे, अंबाला के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम किस तरीके का प्रचार करें, आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को, ताकि इन चीजों को वो समझें, जितना भी वो उन चीजों का इस्तेमाल कम कर सकें उतना उनके जीवन के लिए फायदा होगा, प्लीज।
2: हाँ, कुछ चीजें हैं जो बहुत आसान है बट हम उस तरफ सोच नहीं पाते हैं। जैसे अपनी बॉडी को एक जर्नल डिटॉक्स दीजिए, मतलब हफ्ते में जो आप एक बार फास्ट रखिए, उस फास्ट को ऐसे वाला फास्ट नहीं कि एक घंटे बाद आपने फ्रूट चाट खा ली, एक घंटे बाद साबुदाने की टिक्की खा ली, एक घंटे बाद हमने आटे, कुट्टू के आटे वाली रोटी खा ली, वो फास्ट नहीं है, वो उपवास नहीं है। अगर आप सही मायने में डिटॉक्स करना चाहते हैं तो उस डिटॉक्स के लिए आपको अपने शरीर को रिलैक्स करना पड़ेगा। उसके सिस्टम्स में बहुत सारा जो 24/7 वो आपके लिए काम कर रहा है उसको शट डाउन करना पड़ेगा, कि आप जो हाइपरनेस में घूम रहे हैं, ओवर एक्टिव हैं, उसको थोड़ा आप ठंडा करिए, अपनी जठराग्नि को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत लॉयल है, वो इमीडिएटली अपनी ही बॉडी में अपने रिपेयर वर्क को स्टार्ट करती है। जब रिपेयर वर्क को स्टार्ट करती है तो उसको आपकी अंग्रेजी शब्दों में कहा जाए या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो दे कॉल इट ऑटोग्राफी, मतलब आपका अपने ही शरीर को खाना, यानी जो वेस्ट टॉक्सिन्स उन सबको भी बड़ी इजीली वो एनगल्फ करता है, जल्दी जल्दी कंज्यूम करता है। तो हमें हफ्ते में एक बार तो अपने आप को तसल्ली से डिटॉक्स करना बनता है। वो हो सकता है खान पान से, वो हो सकता है सोने से, वो हो सकता है कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। जो आपके शरीर की प्राण शक्ति चलती है वो ब्रीदिंग है। बहुत लोगों में बड़ा मिथ है कि हम जिम जाते हैं इसलिए हमारा वेट कंट्रोल होता है। अगर हमने कभी ध्यान से 7th-8th में साइंस पढ़ी हो तो हम इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि जो बॉडी में ऑक्सीजन है वो कंबशन करती है, जलाती है आपके फैट को
1: जी।
2: तो जब हम ब्रीदिंग फास्ट करें, चाहे वो एक जगह बैठ करके भी करें, तो आप तो अपने कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। इट इज नॉट जिमिंग, इट इज द टोन ऑफ योर ब्रेथ विच इज बर्निंग, जो आपके कैलोरीज को बर्न कर रही है। तो आपको चूज करना है, हर चीज चॉइस पर है, आप किधर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये आप सोचें, आप समझें, तब आपको पता चलेगा कि हमारे लिए वो हफ्ते का एक दिन हमारे अपने शरीर के लिए। वैसे तो हम किसी को 10 रुपीज की भी चीज ऐसे नहीं देते हैं बिना मतलब के
1: जी।
2: तो जब अगर हम अपने शरीर के लिए जागरूक नहीं है, जागृति नहीं है कि क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या हम उतना पैसा कमा करके भी खुश हैं, नहीं है ना, तो उसका कारण है क्योंकि आपके शरीर में हार्मनी नहीं है। उस हार्मनी को रिस्टोर करेंगे तो शायद कम चीजों में भी आप मुस्कुराते दिखेंगे,
1: संतुष्टि मिल सकती है।
2: मजदूर सबसे ज्यादा खिलखिलाता दिखाई देता है।
1: मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, जब हम सैर के लिए जाते हैं हम ये मान के चलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, समय नहीं है, पर फिर भी हम अगर एक घंटा निकाल लेते हैं सैर के लिए और हम 3 या 4 या 5 किलोमीटर चल लेते हैं और उसके बाद आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो क्या वो 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का चलना क्या वो हमारे सेहत के लिए किसी हद तक फायदेमंद है? क्योंकि जब हम आज, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट वॉचेस भी है तो वो आपको बता देती है कि आपने 400 कैलोरीज को बर्न किया, तो क्या वो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है?
2: स्टार्ट करती हूँ क्योंकि आपका व्यक्तिगत प्रश्न है तो डिजिटल वॉचेस भी आपकी एनर्जी खा रही है
1: जी,
2: एथरिकली तो वो भी आपको कंज्यूम कर रही है रादर देन कि आप उसे एज अ कमोडिटी कंज्यूम करें
1: जी,
2: तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए।
1: ओके,
2: दूसरी चीज, अगर हमें शारीरिक रूप से सिर्फ सिर में दर्द है
1: जी,
2: तो हम क्यों चाहेंगे कि हम पैरासिटामोल खाएं और फिर वो लीवर पर भी इफेक्ट करे
1: जी।
2: तो ये हमें थोड़ा सा खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि हमारे शरीर के लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हम उसे एक घंटे में ही 15 मिनट ब्रीदिंग कर सकते हैं, ऐसे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपका वेट लूज भी कर सकती हैं, आपको डिटॉक्स भी कर सकती हैं, आपको काम भी कर सकती हैं, यानी आप पहले से और शांत हो जाएंगे,
1: ठीक,
2: आप में ठहराव आना शुरू हो सकता है। दूसरा, उसी में से हम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा निकाल करके अपने लिए एक डिटॉक्स जूस बना सकते हैं, वो भी एक डबल काम करेगा। अगर आप 1 घंटा सैक्रिफाइस करने को तैयार ही हैं, तो जुडिशियसली उसको इस तरीके से प्लान करें कि वो 15-15-20-20 मिनट मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं जो बेस्ट तरीके से मेरे शरीर को स्वास्थ्य को अचीव करने में हेल्प कर सके।
1: ये हमें कौन समझा सकता है, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमारा मकसद आज के इस कार्यक्रम का यही है कि हम भी समझें और हमारी श्रोता भी समझें और हम अंबाला को एक स्वस्थ होने की एक दिशा दे सके।
2: बिल्कुल यही कहूंगी, देखिए जिंदगी बहुत तेज है, शायद सबके पास इतना समय भी नहीं है कि वो खुद इस चीज को पढ़ें, रिसर्च करें, समझें। हाँ, आपका ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बढ़िया तरीका है, ऐसे ही कुछ और टॉक्स आपके प्लेटफॉर्म से या कहीं और कभी भी आपको लगता है आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा अपना इंटरेस्ट, वही बात है कि कौन सी रील चलानी है आपको
1: जी,
2: आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज ओवर द इयर्स आपकी बॉडी को बेनिफिट करेगी। और हमारे बुजुर्ग हमें बहुत अच्छा बताते थे, अगर हम अपने बुजुर्गों के घर में सुने तो शायद ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य होगा हमारा। अगर हम एक बड़ा छोटा सा भी एग्जांपल ले, अगर पुराने जमाने में, और अभी भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, बासड़े बनाए जाते हैं
1: जी,
2: पुराना खाना खाया जाता है, उसका कारण क्या है? अगर जो चपाती होती है वो जब पड़ी रहती है तो वो पुरानी होते ही, बासी होते ही उसमें B12 बढ़ जाता है, तो जिनकी एड़ियां गलती हैं या डिटॉक्स नहीं हुआ है, पेस्टिसाइड शरीर में ज्यादा है, तो पैरों के दर्दों को बहुत आराम रहता है उससे। तो ऐसे ये सारी जो चीजें हैं बड़ी साइंटिफिक थी, अगर हम उन रिचुअल्स पे भी मुझे लगता है काफी हद तक स्विच बैक करें तो हमें फिर भी बहुत सारी चीजों का फायदा हो सकता है जो हम करना नहीं चाहते। अब
1: बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है श्वेता जी, और हम श्रोताओं के लिए एक डाइवर्शन लेते हैं। श्वेता जी, क्या आप संगीत को भी हमारे स्वस्थ जीवन का एक हिस्सा मानते हैं? अगर हाँ तो कौन सा ऐसा आपका मनपसंद गीत है जो हम आपको और श्रोताओं को सुनाएं?
2: मैं ये चीज को मानती हूं कि अगर हमारे पास समय है तो कुछ समय हमें कुछ संगीत को भी सुनने के लिए देना चाहिए, क्योंकि एक शब्द है म्यूजिक थेरेपी
1: जी,
2: और फ्रीक्वेंसी, ये बड़ा ही इलैबोरेट टॉपिक है, मैं इस पर क्या बात करूं कि आपके हर ऑर्गन की भी एक फ्रीक्वेंसी है।
1: अच्छा,
2: और आपके शरीर की भी एक फ्रीक्वेंसी है, आप हार्ट बीट लेते हैं ना, ECG लेते हैं ना
1: जी,
2: तो इसी तरह से बाकी सबके भी है, और साइंस ने तो प्रूव कर दिया है कि प्लांट्स के लीव्स तक में ये फ्रीक्वेंसी है
1: जी,
2: उनका भी म्यूजिक बजता है
1: जी।
2: तो जब आप अच्छी फ्रीक्वेंसीज को सुनते हैं, पॉजिटिव सॉन्ग्स को सुनते हैं, और ये बड़ा फैशन है, जितना ज्यादा आप लोगों से पूछेंगे ना उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा अब आप ही के प्लेटफॉर्म से बोलूंगी फूके हुए गाने होते हैं ना दुखी वाले, वही पसंद आते हैं। तो ये मान करके चले, फिर बात आती है चॉइस
1: जी।
2: अच्छे गाने सुने।

0: सभी श्रोताओं का स्वागत एक बार फिर। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य से कितना अलग है। जहां आज के जीवन में तनाव, चिंता और अवसाद से सभी लोग ग्रस्त हैं।
1: शुक्रिया इस क्वेश्चन के लिए। मुझे लगता है लोगों को इसकी बहुत जरूरत है
0: जी।
1: आजकल बड़ा ही फैशनेबल सा वर्ड है डिप्रेशन
0: जी।
1: अगर लोगों से बात करें तो मिडिल एज हैं, ओल्ड एज हैं, इवन छोटे बच्चे, आप स्कूल गोइंग बच्चों से पूछे उन्हें भी डिप्रेशन है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमने अपने आसपास में बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशंस को इकट्ठा किया है
0: जी।
1: खान पान में भी इकट्ठा कर लिया
0: हाँ।
1: और अपनी जड़ों को छोड़ दिया, अपनी उन चीजों को छोड़ दिया जो हमें सिखाई गई थी। उसके साथ साथ सही मायने में कहें तो अब हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम ज्यादा है। कभी पहले खाने बनाने वाली कोई आती थी क्या?
0: नहीं।
1: क्या कभी पहले मिक्सी हुआ करती थी क्या?
0: नहीं।
1: या खेतों में हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स हुआ करते थे? कुछ भी नहीं होता,
0: खुद ही करते थे।
1: हाँ, तो हम मानसिक रूप से इतना फ्री हैं कि हम गार्बेज को, कचरे को वहां पर रख पा रहे हैं। हमारे पास उतना समय है कि हम उसे उतना कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या में इतने ही बिजी हैं तो आप कैसे सोच पा रहे हैं कि उसने कैसे कहा, उसने क्यों कहा, किस लिए कहा, कब कहा, दोबारा कब कह सकता है, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? ये सब सोचने के लिए दिमाग को खाली भी तो होना चाहिए
0: जी।
1: अगर आप अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हैं तो आपके पास सोचने का समय होना नहीं चाहिए। और फिर बात आ जाती है चॉइस और विल पावर की
0: जी।
1: कि क्या सोचना है, मेरे लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ कितनी है, किस काम को करने से मेरा कितना फायदा होने वाला है, वो आप ही को डिसाइड करना है। सबसे बड़ी चीज है, एक 40s में आते आते तक पेरेंट्स, फादर मदर दोनों कहेंगे बेटा पानी का गिलास पकड़ा दो। ये सबसे बड़ा फैक्टर है अपने आप को एज करने का। तो जो लोग काम कर रहे हैं ना गांव में, वो गायों को भैंसों को चरा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेडीज भी कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं, वो आपको वहां पे 80 साल तक भी फिट दिख रहे हैं। तो आपको मान करके चलना चाहिए ब्रेन भी एक मसल है। अगर सही तरीके से आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं दी, हीमोग्लोबिन

0: पूरा नहीं है बॉडी में जो ऑक्सीजन को लेकर वहां जाने वाला है, हरी सब्जियां आप खा नहीं रहे हैं, तो ब्रेन बेचारा क्या करेगा, जरूरत से ज्यादा सोचेगा और डीजेनरेट करेगा हर रोज। हमने उसको काम दिया ही कहां है? मानसिक तौर से तो जो साइंटिस्ट बैठा है ना, बस वही काम कर रहा है मुझे लगता है।
1: क्या यही अवसाद का एक मुख्य कारण हो सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल है, 100%। अगर हम इस चीज को मान करके चले, आपका मूड बहुत खराब है
1: जी,
0: और आप बैठ जाएं और अपना ही कोई एक अर्जेंट काम याद करके शुरू कर दीजिए, पूछती हूँ 15 मिनट बाद वो वैसा टोन रहेगा या नहीं, आप भूल ही जाएंगे।
1: मेरे हिसाब से वो स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अचानक वो आपने काम
0: से
1: में...
0: अचानक से मान लीजिए आपके घर फोन आ जाए, आपकी बेटी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं,
1: ठीक है,
0: तो आपके घर के डिप्रेशन का पेशेंट भी उठेगा और भागेगा,
1: अरेंजमेंट करेगा, साफ सुथरा होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए,
0: बिल्कुल। तो आप उनसे पूछिएगा आधे घंटे बाद कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप डिप्रेस्ड हैं, एक्सेप्ट सीवियर केसेस
1: जी जी,
0: जो उस स्टेट को परमानेंट बॉडी में हैबिचुअल बना चुके हैं।
1: आपने जो अभी शुरुआत में बात की, क्या ऐसा है कि हम साधारण लोगों ने या हर एक व्यक्ति ने अपने माइंड में, अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को जोड़ दिया है जिनकी जरूरत नहीं है?
0: बिल्कुल बिल्कुल। आप जितने टीवी सीरियल्स देखते हैं, कितना ज्यादा आप देखिए, बिग बॉस पसंद है, ये पसंद है, वो क्या है, लेग पुलिंग है, रोस्टिंग करना है। अब इसमें बड़ी बेसिक सी बात आती है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी
1: जी।
0: हर्ड मेंटालिटी का मतलब है, कभी आप एप मैन थे, कभी पुराने जमाने में गुफाओं में रहते थे, तब आपको लीड करके चलने की जरूरत होती थी, क्योंकि एक ग्रुप काम करता था कि कभी हाथी आ गया या शेर आ गया तो हम कैसे बचेंगे, तो मिलजुल करके हमें चलना चाहिए
1: जी।
0: और इसको हम हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, और एक उसमें लीडर हुआ करता था। अगर हम मान करके चले, अगर हम अपने आप से अवेयर हैं, तो हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मॉनिटर की जरूरत हमें तब है जब हमें ये पता है कि ये नहीं पता है कि हम क्लास में बोल रहे हैं गलत है।
1: ओके।
0: अगर हमारी वो हर्ड मेंटालिटी को हम हटा दें, तो हमारे आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे कि दरानी जठानी में मैं बड़ी वो छोटी, उस पड़ोसी से मेरी कार बड़ी, या मेरा ऐसे ज्यादा बेटर और उसका ऐसे। ये हर्ड मेंटालिटी ही है कि जैसा मैं सोच रहा हूं, किट्टी पार्टीज में भी ग्रुपिंग हो जाती है, छह लोग एक तरीके की सोच रखेंगे और 10 लोग एक तरीके की सोच रखेंगे, और वो एक दूसरे को खींचते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड दिखेगा आपको, कोल्ड वॉर इसका विटनेस है। आज भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज या सोशलिस्ट इकोनॉमीज इसका विटनेस है। वो जो हर्ड मेंटालिटी है, उसकी हमें अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम सब खुद को ही मैनेज कर ले, तो क्या ऐसा है किसी को बताना पड़ेगा कि आप ये करिए? क्लास में अगर हर बच्चे को मालूम है मुझे चुप रहना है, तो मॉनिटर की आवश्यकता है ही नहीं। आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं आपको पढ़ना है, आप एक मिडिल एज पर्सन हो, फिर भी आपके एल्डर्स आपको घर में बताएंगे बेटा टाइम से रात को आ जाना, तो क्या आपको नहीं मालूम है? मालूम नहीं है ये बात नहीं, आप उसको रियलाइज नहीं करते, हम उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें क्या करना चाहिए।
1: तो मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, और ये मानसिक स्वास्थ्य हम सब लोगों के लिए जो इस विषय के बारे में नहीं जानते हैं, उनको किस तरीके से ये समझाया जाए कि अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, आने वाली जो जिंदगी है उस पर हम एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहे हैं।
0: डूज एंड डोंट्स बहुत बेसिक है, जो पुराने जमाने के लोग जैसे रहा करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही जीवन होना चाहिए, सरल स्पष्ट। आप 2 झूठ बोलेंगे तो 10 और घुमाने पड़ेंगे, उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा। स्पष्ट रहिए, जो नहीं कर सकते हैं उसको रफ होकर रूड होकर ना बोले, प्यार से बोले मैं इतना ही कर सकता हूँ, ऐसा ही मेरी कैपेसिटी है, तो उसको उसी वे में हैंडल करिए। अपने आप को लीपा पोती करके प्रेजेंट करना कि हम बहुत अच्छे हैं, हम इतना भी हैंडल कर लेंगे, होगा है नहीं, फिर स्ट्रेस में आएंगे, फिर घर में आके सबको डांटेंगे, काम भी 4 खराब करेंगे और अपना हेल्थ भी डाउन करेंगे
1: और स्ट्रेस भी होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को जितना सरल रखेंगे, स्पष्ट रखेंगे, गोल ओरिएंटेड रखेंगे कि आपने करना क्या है, आप चाहते क्या है, व्हाट इज योर टारगेट, तो आप उतने ही क्लैरिटी से अपनी डे टू डे रूटीन को भी करेंगे, उतना कैओस भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा।
1: इसके साथ जुड़े 2 प्रश्न मैं करूंगा, क्या जो गुस्से वाला होता है या ऊंचा बोलने वाला होता है, क्या वो भी स्ट्रेस और अवसाद से ग्रस्त होता है?
0: बिल्कुल, इट इज अ रिस्पॉन्स, इट इज अ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अगर स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक लेवल से ऊपर हो जाती है, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूंगी अटेंशन डेफिशिएंसी, अगर मान लीजिए घर के एक मेंबर को लगता है कि मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो पक्का चिल्लाएगा,
1: ताकि सबका ध्यान उस तरफ जाए।
0: इसको हम बोलते हैं नेगेटिव अटेंशन।
1: okay.
0: ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिनको प्यार नहीं मिला, एक वो एक बड़ी कॉमन सी बात कही जाती है कि माँ से दिन में कम से कम 6 से 7 बार प्यार से बैठे, उन्हें गले लगाएं, ताकि आपकी बॉडी के जो हैप्पीनेस हॉर्मोन्स हैं उसमें से टैप हों। तो वो अब मिलता नहीं है, टाइम है नहीं किसी के पास। वही बात घुमा फिरा करके आती है, बेसिक रूटीन्स पर आइए, वापस उन चीज़ों पर जाइए, सिंप्लीफाई करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड करिए चीज़ों को, तो आप उतना ही पीस में आ जाएंगे। और नेचुरली इन सबको कंट्रोल करने की, रेगुलराइज करने की, राइट डिसीजन लेने की पावर हमें 100% हमारा योग और आहार, न्यूट्रिशन देता ही देता है। आप जितना तला हुआ खाएंगे, आप एक समोसा खाएं, एक भटूरा खाएं, आपके ब्रेन का जो माइटोकॉन्ड्रिया कम से कम अगले 10 घंटे के लिए ऑलमोस्ट स्लीप मोड पे आ जाता है
1: जी।
0: तो वो आपको चूज करना है
1: कि आपको किस तरीके की जिंदगी
0: चाहिए।
1: चाहिए जो प्रश्न मैंने सोचे थे आपसे पूछने के लिए, पर जो ये सब्जेक्ट है मानसिक स्वास्थ्य, ये इतना बड़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी है। मैं इस प्रोग्राम में ये एक्सेप्ट करता हूं, शायद हमें भी इस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, जो हम सबको सचेत होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहिए। इसके साथ ही एक प्रश्न मैं करना चाहूंगा, जब हम रात को सोते हैं, सोते टाइम हम आराम की नींद कैसे लें? क्योंकि सोते टाइम अगर कोई विचार हमारे मन में या दिमाग में है, उसको हम कैसे ऑफ करें, उसको हम अपने उस समय से अलग कैसे करें, इसका क्या कोई तरीका है?
0: बिल्कुल है। अगर आप संध्या समय में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बेसिक, जो सभी को आती भी होंगी, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, इन सबको अगर हम करते हैं, तो ब्रीदिंग से जो ब्रेथ है हमारे, बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है ब्रेथ से
1: जी।
0: एक फैक्टर वो हम कर सकते हैं, मेक इट अ पॉइंट। अगर आप स्कूटर भी चला रहे हैं ना, मुझे लगता है अगर आप वहां पर भी डीप ब्रीदिंग शुरू कर देते हैं ना, तो वो भी काम करता है। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं कहीं किसी ड्यूटी पर गई हूँ, तो मैं वहां खड़े खड़े अपने फिंगर्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाती रहती हूँ। कुछ जो योग की क्रियाएं या ब्रीदिंग है जो मैं खड़े हुए वहां कर सकती हूँ, तो वो मैं कर लेती हूँ। वो क्या है, मेरी चॉइस है कि मुझे खड़े रहकर इधर उधर देखना है या वो काम करना है। आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब हम इन चीजों को रूटीन में लाते हैं, तो ये हमें कुछ एक बेटर स्टेट में ले आते हैं कि हम धीरे धीरे धीरे धीरे रिकूप कर सकें, वापस एक शांत और वेरी सोफिस्टिकेटेडली हम उस चीज को हैंडल कर लें। दूसरा इसमें आता है, रात को हम मोबाइल का कम से कम सोने से पहले 1.5-2 घंटा पहले यूसेज बंद कर दें, क्योंकि जो ब्लू लाइट है, जो इसमें आपकी स्क्रीन टाइमिंग का जो हिसाब किताब है, वो बहुत गड़बड़ा देता है आपकी हारमोनी को। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम जो योग बताती है, वो सूर्य और चंद्र नाड़ी से चलते हैं, जो कि सूर्य और मून की पोजिशनिंग से काम करते हैं। तो उसमें जैसे जैसे बॉडी को मैसेज मिलता है कि संध्या हो गई है, रात होने का समय है,
1: बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता रेस्ट मोड में आनी शुरू हो जाती है।
0: आती है।
1: तो इसका मतलब है कि अगर हमने मोबाइल सोने के समय तक यूज किया, तो वो एकदम बॉडी जो है वो लाइव है, वो सोने के स्लीपिंग मोड में नहीं, अभी नहीं गई है।
0: बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स कि हमने बटन दबाया ऑन हो गया, बटन दबाया ऑफ हो गया। इट टेक्स टाइम। आप है एक 50 trillion सेल्स का सेट
1: जी,
0: तो उसके अंदर एक एक सेल में इतनी मेमोरी है कि अगर मैं 8 storied buildings को मैं इकट्ठा खड़ा कर दूं, इतनी मेमोरी है, जिसको हम बोलते हैं ना संचित कर्म
1: जी।
0: आपके जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ऑटो मोड में एकदम से ऑफ हो जाएंगे? इट टेक्स टाइम, उसको टाइम चाहिए।
1: उसके लिए हमें एक प्रोसेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे खास करके श्रोताओं को मैं एक बार फिर बताऊं कि जब हमारे सोने का समय है, तो श्वेता जी कह रही हैं कि अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, तो आप 2 घंटे पहले उसको यूज करना बंद कर दें, ताकि आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लीपिंग मोड में जाएगी। जब आप सोने जाएंगे, तो आप चैन की नींद सो सकेंगे। श्वेता जी, मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, खास करके जो ये वाला सेक्शन है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।
0: इससे पहले मैं एक बताना चाहूंगी कि वही रात की जो नींद है
1: जी,
0: वाईफाई को प्लीज बंद करके सोइए, क्योंकि आपका ब्रेन भी उन सारे के सारे मैग्नेटिक मोड्स को पकड़ता है। आप ये मानकर चलिए, आपको क्यों बोला जाता है कि आपको किधर सिर करके सोना है, किधर सिर करके नहीं सोना है, ये सब चीजें हमें सिखाई गई हैं हमारे हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म में। वो क्यों सिखाई गई? क्योंकि आपकी बॉडी भी एक मैग्नेटिक पोल के साथ काम करती है और अर्थ भी एक पूरी पूरी मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। तो अगर हमारा उसमें मॉडर्म चल रहा है तो वो भी आपके एंटीनास को लाइव रखेगा। और अगर हम बात करें तो हमारे पुराने जमानों में शिखा रखी जाती थी
1: जी।
0: वो एक तरीके का एंटीना ही था। वो आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जब बातें हम बड़ी लॉन्ग उसमें चलते हैं तो वो ये क्राउन चक्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो वाईफाई को शट डाउन करिए प्लीज। उससे आपकी बॉडी के मैग्नेटिक फील्ड्स, हार्ट इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड ना, वो आपको पूरा ईसीजी तो दिखाई देता है
1: जी।
0: आप उसमें देख सकते हैं, ऐसी हर बॉडी के ऑर्गन की अपनी एक कार्यक्रम करने की सिस्टम की प्रॉपर फ्रिक्वेंसी है। तो वो 100% वाईफाई बंद करके सोना चाहिए। उस टाइम तो हमें जरूरत भी नहीं है
1: जी।
0: तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं और इसमें हमें कोई टैक्स भी नहीं है
1: जी।
0: बहुत सारे माइग्रेन्स, हेडेक्स वहीं स्नब हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं अगर वाईफाई भी बंद हो जाए तो।
1: जब हम सोते हैं तो हम अपने मोबाइल को अपनी सिरानी के नीचे रखते हैं, वो कितना घातक है हमारे लिए।
0: पूर्णतः अब इसको मान के चले तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है अगर आप फोन अपने आसपास भी रख के सोते हैं। एटलीस्ट आप थोड़ा दूर रखें, बहुत अच्छा तो ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं तो कमरे से बाहर रखें, उसको स्लीप मोड में डाल दें, एयरप्लेन मोड में डाल दें, कि कम से कम सिग्नल्स जो हैं वो आपकी बॉडी की हार्मनी को डिस्टर्ब करें।
1: आज का हमारा ये कार्यक्रम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूंगा, तनाव और चिंता से बचने के लिए कौन सी साधारण आदतें अपनाई जा सकती है?
0: हमें अपने कामों को शॉर्टलिस्ट करके तैयार रखना चाहिए। हमारे पास हम अगर अभी एक बार बैठ जाएं और लिस्टिंग करना शुरू करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उसके बाद हम इसमें से प्रायोरिटाइज करें
1: जी।
0: एक पहली कैटेगरी नंबर वन की निकालें, कुछ चार या पांच काम से ज्यादा काम निकलेंगे नहीं आपकी पूरी लिस्ट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है
1: जी।
0: उसके बाद सेकेंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड तक तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। होता क्या है, हम थर्ड फोर्थ ग्रेड के कामों में ही इन्वॉल्व रहते हैं और फर्स्ट सेकेंड रह जाते हैं, फिर वो हम मेंटल प्रेशर में आते हैं। स्ट्रेस इज नॉट अ वर्ड, मतलब अगर हम मान के चले ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैनेज हम करते हैं वैल्यूएबल्स को, असेट्स को, अच्छी चीजों को। मैनेजमेंट वर्ड वहीं से बना है, सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड वहीं से बना है
1: जी।
0: लेकिन जहां ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ स्ट्रेस मैनेजमेंट, इट इज नॉट अ थिंग टू बी मैनेज्ड, इट इज अ सिचुएशन। जब देर इज अ लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंडक्ट,
1: स्ट्रेस इवॉल्व्स।
0: हाँ, आपने जो रूटीन छोड़ी, जो प्रायोरिटी वाला काम छोड़ा, वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, दैट विल बैकफायर, और फिर वो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी में हार्म करेगा ही करेगा।
1: श्वेता जी, हम मुझे लग रहा है कि हमें एक और कार्यक्रम करना होगा ताकि हम और विस्तार से लोगों से जुड़ पाए और उनको कुछ दिशा निर्देश दें। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अम्बाला के लिए काम करते हैं और अम्बाला के लोगों को हम एक सही दिशा दे पाए। यहाँ पर गुंजाइश है एक और गाने की, और हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं को बातचीत के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करें। तो कौन सा ऐसा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं और हम श्रोताओं को भी सुनाएं?
0: एक हल्का फुल्का सा गीत लेते हैं, एक प्यार का नगमा है।
1: श्रोताओं आइए सुनते हैं श्वेता जी का ये मनपसंद गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो इतस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। आज हम बात कर रहे हैं श्वेता शाह जी से। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए संतुलित आहार की भूमिका कितनी जरूरी है।
1: खाने पीने से ही हम अपने शरीर को रेडी करते हैं
0: जी।
1: आप ज्योग्राफिकली भी या अगर दूसरी तरह से भी एनालाइज करें, मोमोज हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट नहीं था
0: जी।
1: और उसके साथ वो जो बहुत तेज मिर्च और लहसुन की चटनी मिलती है वो भी नहीं था। उसका कारण क्या है कि जिस जगह से वो आया है डेलिकेसी, वहां पर कच्चा मैदा डाइजेस्ट हो जाता है, वहां की बॉडी के, वहां के जो टेम्परेचर इतने मिनिमम में रहते हैं, वहां पे बॉडी को एक्टिव रखने के लिए उनको तेज मिर्च चाहिए
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे यहाँ के लोगों का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और यहाँ का जो रहन सहन है, उसी हिसाब से हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। हमें इतनी तेज मिर्च खाने की जरूरत नहीं है। हमारा पेट उतना, हमारे जेनेटिकली हमारी इतनी बॉडीज अडाप्टिव नहीं है कि हम उस कच्चे मैदे को अच्छे से पचा सकें। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए कि हम उन चीज़ों को कम खाएं। जितना तेज मिर्च खाएंगे, जितना मसाले तेज करेंगे, वो उतना ही आपकी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करेंगे, हाइपरनेस क्रिएट करेंगे। जितना ब्लैंड खाना होगा उतना ही शांत इंसान आपको दिखाई देगा।
0: यानी कि उसको हम तामसिक खाना बोल सकते हैं।
1: यही क्लासिफिकेशन इसीलिए उन्होंने बनाई है ना हमारे शास्त्रों ने कि ये ऐसा है ये ऐसा है, उसका कारण है। अब मान लीजिए कोई भी चीज जो तामसिक बोली गई, अब इस बारे में बात की जाए तो शायद मुझे लगता है ये बेस्ट चीज है इस बारे में बात करने की। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी रहता है हर समय, वेजिटेरियन डाइट लें या नॉन वेजिटेरियन डाइट लें या कैसे करें। पहली चीज साइंस, बेसिक साइंस, कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट, प्लांट ने कन्वर्ट किया एनर्जी को, प्लैनेट पे एनर्जी सन से ही आ रही है, उस प्लांट फूड को अगर आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं तो आप पहले फेज पर हैं। अगर उस प्लांट को पहले डियर ने खाया, डियर से लॉयन ने खाया, तो क्या लॉयन के पास उतनी एनर्जी जाने वाली है?
0: मेरे हिसाब से नहीं,
1: बिल्कुल भी नहीं। तो जितना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उतना ही आपके अंदर मॉलिक्यूलर, जिसको हम योग की भाषा में कहें तो प्राण शक्ति क्षीण होती जाती है।
0: जी जी।
1: तो अगर हम पहले तो अपने फूड को प्लांट बेस्ड रखें, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मान लीजिए हम क्रिलियन फोटोग्राफी की बात करते हैं, क्रिलियन फोटोग्राफी जो हमारे ऋषि मुनियों ने आमतौर से आंख बंद करके ही सब कुछ देख लेने का जो उनकी कला थी, वो अब थोड़ा साइंस ने भी अपने आप को डेवलप किया है। क्रिलियन फोटोग्राफी रहती है, एवरीबडी कैन सर्च, आप देख सकते हैं, सब गूगल पे आपको मिलेगा
0: जी।
1: तो अगर आप उसकी पिक्चर्स देखें तो एक रॉ फूड की, जो अगर आप एप्पल काटें या कोई भी फ्रूट काटें या कोई भी ऐसा रॉ फूड जो आप सीधा खाने वाले हैं, उसके अराउंड में एक वॉयलेट एनर्जी का लाइन दिखता है,
0: ठीक है,
1: जो फुली स्पार्कलिंग रहता है, फुल ऑफ एनर्जी,
0: ठीक है।
1: वही अगर आप लोफ ऑफ मीट में देखेंगे तो यू विल फाइंड हार्डली एनी एनर्जी।
0: ओके,
1: हार्डली एनी एनर्जी। तो आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ जुबान का स्वाद ले रहे हैं, खाना तो जा नहीं रहा है अंदर। दूसरी बात आती है फ्रिज में रखा हुआ खाना
0: जी।
1: 40 मिनट्स के बाद खाने की वैल्यू, जो हमारा जो यूनिवर्स को समझाने की जो बेसिक हमारा सनातन का तरीका है कथाओं से, शिव तत्व जो है वो तोड़ने का तत्व है, तो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो साइंस कहता है डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो फूड की जो एथिक वैल्यू है, जो उसमें गुणवत्ता थी, प्राण शक्ति थी, वो घट गई। और दो दिन बाद आप फ्रिज से निकाल के खा रहे हैं, 6 दिन बाद निकाल करके खा रहे हैं, तो वो इट इज यूजलेस, उसमें कुछ है ही नहीं,
0: न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसकी खत्म हो गई। आपका कहने का मतलब है कि हम जो भी कुछ खाएं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा होना जरूरी है।
1: बिल्कुल। अगर आप उसको, आप मान के चलिए पाठ पूजा को अगर हम छोड़ भी दें किसी भी गुरुद्वारे में, मंदिर में खाना क्यों इतना अच्छा लगता है लोगों को भंडारे का, कारण क्या है, उसी समय बना और उसी समय कंज्यूम हो गया
0: जी।
1: तो जितना फ्रेश कुक्ड फूड होगा, पहले तो पकाना ही कम चाहिए, चलो जितना भी, और हम इतना साधु संत तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही इस मोड में आ जाएं, बट जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए, फ्रेश फूड इनटेक एंड नॉट मोर देन अ डे। मतलब वो जो फ्रिज का कॉन्सेप्ट है ना, उसकी हमें जरूरत नहीं है,
0: नहीं है,
1: जो बना है जैसे बना है उसको विद इन अ डे कंज्यूम करिए,
0: यानी कि उतना ही बनाइए जितनी की जरूरत है, नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा उसको बनाया जा सकता है, ताजा बनाया जाए और ताजा खाया जाए। इसके साथ ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज के डेट में मोटापा है उसको कम करना है या उसका बढ़ना है, तो क्या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है क्या उसका उसके साथ कोई कनेक्शन है?
1: बिल्कुल है। अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग आपस में लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं कि इसको तो कुछ भी खिला दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको तो घी का पीपा पिला दो तब नहीं फर्क पड़ने वाला, और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पानी पीते हैं तभी हमें बहुत मोटापा चढ़ता है। इसका कारण क्या है?
0: इसका कारण
1: आपका मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है बॉडी का। हर बॉडी अपने हिसाब से जो आप खा रहे हैं उसको एसिमिलेट करने के लिए पहले तोड़ती है
0: जी।
1: तो उस तोड़ने के प्रोसेस को हम मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, फिर आ जाती है बात की सही खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, ताकि अगर एक सिंगल, मैंने पहले भी बताया कि अगर एक सिर्फ मैग्नीशियम कम हो जाएगा ना तो आप सो नहीं पाएंगे रात को। तो वो ही है, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। अगर एक चीज होगी तो दूसरी अब्जॉर्ब होगी। डी, विटामिन डी होगा तो आपका कैल्शियम जनरेशन प्रॉपर होगा, घुटनों की दर्द, बैक के एक, ये सब कनेक्टेड है। तो आपको सब चीज चाहिए, थोड़ी थोड़ी चाहिए और सही टाइम पर चाहिए, जिससे आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो सही चले। कुछ योगिक क्रियाएं भी होती हैं जो अगर गड़बड़ा चुकी हैं तो उनको हम सेट
0: किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उन, ये आपका शुगर है वो क्या है, आपका एक ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है, जो नेचुरल बनना चाहिए था वो आर्टिफिशियली लेना पड़ रहा है
0: जी।
1: तो वो सारे जो चीजें हैं अगर हम उनके ऊपर ध्यान देते हैं
0: तो हम उसको अच्छा बना सकते हैं। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को, योग, मानसिक स्वास्थ्य और न्यूट्रिशनल वैल्यूज, जो हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में किस तरीके से इन तीनों चीजों का समावेश करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं?
1: एक घंटा आप निकालिए, उसमें डिसाइड करिए आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, सही खाना है। फिर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को जरूर ऐड करिए, वो बेस्ट हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए
0: जी।
1: फिर उसके साथ कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें, माइक्रोवेव का काम कम करें, वाईफाई का काम कम करें, अपने इंटरनेट का यूसेज लिमिटेड करें, स्क्रीन टाइम को थोड़ा घटाने की कोशिश करें। आप जो भी देखते हैं वो क्रिएट करते हैं, आप जो भी समझते हैं वो अपनी बॉडी में एम्पलीफाई करते हैं। कुछ कहा भी जाता है कि हस्बैंड वाइफ भी इतने सालों बाद भाई बहन से दिखते हैं, उसका रीजन क्या है? एक जैसा न्यूट्रिशनल डाइट जा रहा है
0: जी।
1: एक जैसा एनवायरमेंट है, एक जैसी एथ्रिसिटी हो जाती है, तो वो जो एथ्रिक कनेक्शंस हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, एक से हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर्स भी एक से दिखने लगते हैं। तो वो जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी रूटीन्स को, खान पान को इस तरह से रखें कि आपकी जो लाइफ है वो स्टेबल रहे। डूज एंड डोंट्स में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालूम सबको सब कुछ है लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और डिसाइड करते हैं तो विल पावर नहीं शो कर पाते हैं।
0: तो अगर हम इसको सही दिशा में अपनी जिंदगी को लेके चलें, अपने बॉडी को लेके चलें, तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बढ़ सकती है?
1: बिल्कुल बढ़ सकती है। पुराने, आज से 30 साल पहले वाली जो जनरेशन थी वो आपसे ज्यादा काम कर लेती है जो आज के 40 इयर्स के लोग काम कर सकते हैं
0: जी जी।
1: उसका कारण यही है कि उन्होंने कुछ आपसे बेटर खाया है। आप देखिए कितनी बड़ी मिथ है कि देसी घी में खाना जो बनाया जाता है, वो पहले बुजुर्ग होते थे उबालते थे सिर्फ दाल और उसके बाद ढेर सारी घी ऊपर से डाल के देते थे। उसका कारण क्या है? आप जब घी में सब्जी बनाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खत्म हो जाता है, वो आपकी वैल्यूलेस जैसी चीज हो जाती है। तो आप उसको कच्चा खाए, आप जैसे पिनिया बनाते हैं तो तल तल के बनाते हैं, आप सारी चीज उसमें फ्राई करते हैं, आप उसको रोस्टेड वे में, आई माई सेल्फ मेक द होलसम डाइट ऑफ न्यूट्रिशन, मेरा पूरा एक रेंज भी है उसके लिए। तो वो आपको सारा कुछ देख करके, पुराना टाइप में जैसे छाछ का कंजम्पशन बढ़ाइए, लस्सी का कंजम्पशन बढ़ाइए, अपने कोल्ड ड्रिंक्स को कट डाउन करिए, वही है बेसिक साइंस है। CaCO3 आपका जो बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम से बनता है, मतलब कि आपकी हड्डियां हर बार खत्म होती हैं जितनी बार आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो उसको सब्स्टिट्यूट करिए, वहीं स्नब करिए कि नहीं, इसकी जगह मैं जलजीरा उठा लेता हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ,
0: नींबू पानी
1: ले सकते हैं आप, बाहर जाएं गन्ने का जूस लें, जहां जो पॉसिबिलिटी है आप उसको ऑप्ट करें। ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि आप बिल्कुल ना करें, लेकिन मिनिमल कर सकते हैं,
0: कम कर सकते हैं
1: बिल्कुल, वो आपको कुछ फायदा दे।
0: श्वेता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें बताई और मुझे ऐसा लगता है कि हमें आपको फिर आमंत्रण देना होगा। बहुत सारी बातें आज पूरी नहीं हुई क्योंकि समय हमें बता रहा है कि समय पहले ही पूरा हो चुका है और आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही अम्बाला के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: इस चीज को मान करके चलें कि मेरी तहे दिल से इच्छा रही है और मैं शुरू से ये काम करती भी रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझें कि वो खुद के मॉनिटर बने। अगर वो खुद के मॉनिटर हैं तो उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: अगर खुद का मालूम है कि ये चीज सही है और ये मुझे करनी है तो वो खुद से भी करेगा, उसके लिए वो कुछ भी ढूंढेगा, कोई भी कंटेंट भी पढ़ेगा, कुछ भी रिसर्च भी कर डालेगा। अगर किसी को कोई सूट बहुत पसंद है ना तो अल्टीमेटली वो हस्बैंड को कन्विंस कर ही लेगी कि हाँ भाई मुझे तो लेना ही लेना है
0: जी।
1: तो इट द मीन्स एंड मेजर स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू डिसाइड। आपका लाइफस्टाइल आपके चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है तो आपको चूज करना है करेक्ट तरीके से, वही मेरा मैसेज है और वो हर चीज पर इम्प्लीमेंट होता है
0: जी। अगर अम्बाला का कोई भी व्यक्ति आपसे कोई राय या जानकारी लेना चाहता है, क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है? प्लीज वो भी बताएं।
2: जी बिल्कुल, मैं खुद एक अपनी फूड रेंज आइटनरी बनाती हूँ जिसमें मैं लोगों की डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए उस ऑर्गेनिक सल्फरलेस नॉन फ्राइड या नॉन प्रिजर्वेटिव मेमोरी बाइट्स इस तरीके की जो आइटम्स हैं उसमें रहती हैं, जो कि कुछ फ्रूट क्रशेस हैं या चटनीज हैं, डिटॉक्स वाटर्स हैं, पिन्नीज हैं, बाइट्स हैं। और इन सब के लिए मुझे इस नंबर पर 3 से 8 बजे तक कांटेक्ट किया जा सकता है और वो नंबर है 8307000025 यानी 8307000025।
0: अम्बाला कैंट में जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है, यहाँ आके आपको कैसा लगा?
1: बहुत बढ़िया लगा, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जा सके कि वो कम से कम अपने प्रति जागरूक हो जाएं, जिस नींद में या जिस सुषुप्ति में वो हैं उससे थोड़ा सा
0: वो जाग जाएं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि जो अब बात आप कह रहे हैं कि बहुत बुरा लगता है कि छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है
0: जी,
1: तो वो चीज अगर घटाई जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम अपने श्रोताओं को आपके एक और मनपसंद गीत के साथ छोड़ना चाहेंगे, आप उस गीत के बारे में बताएं और उसके बाद हम लेते हैं इजाजत।
1: हाँ, वो गीत है बड़े अच्छे लगते हैं।
0: तो श्रोताओं आप मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
1: जय भारत।
3: बड़े अच्छे लगते हैं
4: क्या?

आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वस्थ चर्चा। आज के मेहमान थे श्रीमती श्वेता शाह। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो विजस्तान, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। हर बार की तरह इस बार भी एक अलग ही लघु कथा लेकर आया हूं, लघु कथाओं की श्रृंखला के बीच में। और आइए सुनते हैं लघु कथा जिसका शीर्षक है साहब। साहबी ज्यादा दिन नहीं चलती, उसके बाद धरातल पर आना ही पड़ता है। जब साहब रिटायर होते हैं तब उनका सरकारी बंगला, उसका हरा भरा लॉन, ड्राइवरों चपरासियों के साथ बिना अगर नमस्ते करने वालों की भीड़ का एक साथ छोड़ देती है। क्योंकि वो हमेशा से माने बैठा है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, शायद उसके बिना दफ्तर चलना मुश्किल हो जाएगा। लोग आएंगे सलाह मशवरे के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए बेचैन रिटायर साहब उम्मीद भरी आंखों से रास्ते को ही देखते रहते हैं। पर अफसोस, कोई नहीं फटकता। वो पाता है कि उसकी दुनिया उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बदल गई है। अब कार का दरवाजा भी खुद ही खोलना पड़ता है और शॉपिंग के वक्त बिल भी खुद ही चुकाना होता है। बेचैन साहब अब बुलंदसार होने की कोशिश करते हैं। शादी मुंडन से लेकर तेहरवीं तक हर एक के न्योते की इज्जत करने लग जाते हैं।

कोई बुलाए तो सही। वो पाता है कि उसके सामने याचक बने रहने वाले रिश्तेदार अब निष्ठुर हो गए। हैरान परेशान ये रिटायर्ड साहब अब तो बाल भी डाई करना भूल जाते हैं। तेजी से बूढ़ा होने लगता है। चिड़चिड़ाहट लौट आती है उसकी। हताश साहब घर में साहबी करने की कोशिश करते हैं। बेटा भी ना अनमने से ही पास में आता है। कोशिश करता है कन्ने ही काटे रहे। नाती पोते भी दूर भागते हैं। बीवी उसे नाकाबिले बर्दाश्त घोषित कर देती है और बड़े जतन से पाला पोसा गया कुत्ता वो भी उसे देखकर बैठ के नीचे घुस जाता है। ऐसे में वो कुड़ता है और नाशुक्री दुनिया को कर रियाता है। दुखी बना रहता है और आसपास वालों को दुखी करता है। रिटायर साहब और कर भी क्या सकते हैं और जब तक जीता है साहब यही करता रहता है। इन साहबों के अधिकतर बच्चे बहु बेटे नाती पोते इनसे दूर बहुत दूर विदेश में या बड़े शहरों में शिफ्ट हो चुके होते हैं। ये अपना स्वयं का बनाया आलीशान घर माया मोह के चक्कर में छोड़ नहीं पाते हैं और नतीजतन इनकी जिंदगी अकेले ही कटती है। बीमारी अजारी में कोई साथ नहीं देता। खाना भी रूखा सूखा या फिर जो नौकर ने बना दिया ना वही ठूसना पड़ता है। खाने में नींद में की तो गुंजाइश नहीं रह जाती। मरते वक्त भी कोई साथ नहीं होता। जब शव से भयंकर बदबू आती है ना तभी वो घर वाला पुलिस को फोन करता है कि हमारे पड़ोस में बदबू आ रही है। उफ कितना डरावना और विभत्स अमानवीय लगता है ना ये सब। इन सब के जिम्मेदार वो साहब खुद होते हैं क्योंकि ये सारा मायाजल उनका अपना ही रचा हुआ होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय रहते ही यानी ये साहबगिरी 60 साल तक का खेल है। ऊपर सबका हिसाब होना है। अरे साहब साहबी छोड़ मानवीयता अपनाओ समाज और देश के लिए कुछ करो जिसके लिए साहबगिरी मिली है आपको। मानवता समाज देश सदैव रहेगा। साहबगिरी तो चंद दिनों की मेहमान है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना ये सारी बातें हैं एक रिटायर्ड जज की जो सारी जिंदगी अपनी जजमेंट देते रहे लोगों को जज करते रहे। लेकिन दुख की बात है अपने आप को समाज को परिवार को अपनों को जज नहीं कर पाए। आप ऐसी गलती मत कीजिए। शुरू से ही समाज के बीच में परिवार के बीच में अपनों के बीच में अपने ही बन के रहिए। जहां तक बात है रुतबे की वो अपनी जगह पर है। रुतबा सदा कायम नहीं रहता प्यार कभी खत्म नहीं होता।

बादी सबा जाओ ना नदी के उस पार, पूछ के आओ ना उनसे उनका हाल, क्या करती हैं, कैसी रहती हैं, कैसी सोती हैं, कौन सी करवट लेते हैं वो, उनकी आंखें छू कर आओ ना, उनके माथे को चूम कर आओ ना, उनसे पूछ के आओ ना, वो चुपचाप क्यों रहती हैं, क्या मेरे बारे में कभी सोचते हैं। बादी सबा जाओ ना उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ ना, उनसे जाके कहो ना एक बार मिलने आओ ना। ऐ बादी सबा जाओ ना उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ ना, उनसे जाके कहो ना एक बार मिलने आओ ना। ऐ बादी सबा जाओ ना।

जहाँ पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्रे तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या उसने अपनी जात में फिर

अपनी खामोश जिंदगी में बुलाना मुझको, अपने हसीन ख्वाब की ताबीर बनाना मुझको। मैं जो पूछूं तुम्हारा हाले दिल, तू अपनी हर धड़कन की आवाज सुनाना मुझको। मैं जो कभी रूठ जाऊं तुमसे, तू बहुत प्यार से मनाना मुझको। जो कभी हो दिल में हसरत तुम्हारी, बेझिझक अपनी हर हसरत बताना मुझको।

जिंदगी में तनहा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तनहा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

मुझे अब नींद की तलाश नहीं, रातों तक जागना अच्छा लगता है। मुझे है मालूम कि वो मेरी किस्मत में नहीं, मगर खुदा से उसे मांगता हूँ तो उसे मांगना अच्छा लगता है। उसे प्यार करना सही है या नहीं, पर इस एहसास में जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर ये ख्वाब देखता हूँ तो ये ख्वाब देखना अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे हक है या नहीं, पर उसकी परवाह करना मुझे अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है। नहीं मालूम कि वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहता हूं तो उसे अपना कहना अच्छा लगता है।

हमारे आंगन में आग गिरे हैं, हर बूंद में तुम्हारी खुशबू की महकार है, और तभी मौतर हुआ है ये जहां। मेरे बरसों के तस्वुर में तुम अचानक यूं दस्तक दे गए, ये मैंने कभी सोचा ना था, और ख्याल बनकर उतर जाओगे मेरे वजूद में, इसका तस्वुर मैंने

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।
1: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। हम हर मर्तबा बात करते हैं किसी भी एक गोल्डन एरा मूवी के बारे में और जानते हैं उनके अनकहे किस्से और सुनते हैं उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1971 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जो कि गुलशन नंदा जी की एक नावल पर आधारित थी और इस फिल्म के निर्देशक थे शक्ति सामंत। लीड रोल में थे उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, आशा पारेख और उस समय के जाने माने विलन प्रेम चोपड़ा। और कहा जाता है इसी फिल्म में प्रेम चोपड़ा विलन के रूप में हिंदी सिनेमा में उभरे थे और ये फिल्म थी कटी पतंग। इस फिल्म के कंपोजर थे आरडी बर्मन साहब और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के किस्से जारी रहेंगे, फिलहाल सुनाता हूँ एक गीत किशोर कुमार जी की आवाज में।

गीत तो था बहुत सुहाना और हम बात कर रहे हैं फिल्म कटी पतंग की, जिसे रिलीज हुए 52 साल पूरे हो चुके हैं। हम सब ने इस फिल्म की लीड अदाकारा के रूप में आशा पारेख जी को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं शक्ति सामंत जो इस फिल्म के निर्देशक थे, उनकी पहली पसंद आशा पारेख नहीं थी और इससे पहले राजेश खन्ना जी के साथ आशा पारेख की बहारों के सपने फिल्म आई थी, जो कि इतनी नहीं चल पाई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आशा पारेख जी के पास यह रोल कैसे आया और कैसे उन्होंने इसे बाखूबी निभाया, ये भी आपको बताएंगे। इस किस्से को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। उससे पहले सुनाता हूँ आपको मोहब्बत भरा गीत।

उम्मीद करता हूँ कि यह गीत आपको पसंद आया होगा। अब आते हैं हमारे फिल्मी किस्से पर। हम बात कर रहे थे किस तरह यह रोल आशा पारेख जी को मिला। कहा जाता है उस समय शक्ति सामंत जी की पहली पसंद शर्मिला टैगोर थी और सबसे पहले यह रोल उन्हें ही ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वह माँ बनने वाली थी जिस वजह से उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया था। यह फिल्म उस समय के संवेदनशील विषय पर बनी थी जो था विधवा विवाह, और जब आशा पारेख जी ने यह रोल सुना तो इस वुमन सेंट्रिक फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी, और इस तरह हमें मिली कटी पतंग की मधु। और भी किस्से बाकी हैं, उससे पहले सुनिए एक प्यारा सा गीत और लौटकर बताएंगे इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का किस्सा।

गाना हुआ खत्म। अब आप लौट आइए उन फिल्मी किस्सों की तरफ। अगला किस्सा है इस फिल्म के टाइटल ट्रैक का। जैसे कि हम बात कर रहे थे, यह फिल्म बहुत संवेदनशील विषय पर बनी थी और राजेश खन्ना तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उसके बावजूद उन्होंने एक महिला प्रधान फिल्म में काम करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। इस फिल्म का ज्यादातर दारोमदार आशा पारेख जी पर था, लेकिन फिल्म के सारे हिट गाने राजेश खन्ना जी पर फिल्माए गए थे। परंतु फिल्म का शीर्षक गीत जो कि लता जी ने गाया है, वह आशा जी पर फिल्माया गया था। आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा है, जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो मेरे दिल में हुक सी उठती है। आइए अब आपको यह गीत भी सुना देता हूँ।

अब हम लौट आए हैं कटी पतंग से जुड़ा एक और किस्सा लेकर। इस फिल्म के ना केवल गाने मशहूर हुए बल्कि इस फिल्म ने उस सदी के खलनायक और खलनायिका को भी पहचान दी और लोगों के बीच मशहूर भी किया, जिसके बाद उन्होंने खलनायक के रूप में कई किरदार निभाए। और साथ ही साथ इस फिल्म के एक गाने ने बिंदु जी को रातों रात हिंदी सिनेमा की आइटम गर्ल बना दिया। अब सुनाने जा रहा हूँ आपको वही गाना आशा भोसले जी की आवाज में।

शबनम। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो,

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

शहनाई बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? नीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्मी किस्से एपिसोड 2। उम्मीद करता हूँ किस्से सुनकर आपको अच्छा लगा होगा और इस फिल्म के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अब बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अंत की ओर। आपको सुनाते हैं एक और किस्सा जो कि जुड़ा है सचिन देव बर्मन जी से। कहा जाता है राजेश खन्ना जी की इससे पहले बनी फिल्म आराधना में बतौर संगीतकार सचिन देव बर्मन ने काम किया था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे राहुल देव बर्मन ने उस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग करवाई। बाद में कटी पतंग में जब आरडी बर्मन को संगीत निर्देशन पर प्रयोग करने का खुला अवसर मिला तो उन्होंने कमाल संगीत बनाए जो कि लोगों को बहुत पसंद आए। अब इसी के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ एक और गीत के साथ। यह एपिसोड आपको कैसा लगा और अगले अंक में आप कौन सी फिल्म के किस्से सुनना पसंद करेंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056413010। आपसे जल्द मुलाकात होगी और भी फिल्मी किस्सों के साथ। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से अंक 2, रिकॉर्ड एडिट और प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, लेखक एवं निर्देशन सेजल पुंज। ये थी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विद आस्था की

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

पेश है कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान हैं एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार यादव। प्रस्तुत करेंगे भारत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। कला एक प्रकार का कौशल है। कलाकार का कौशल उससे कहा जाता है जिसमें कलाकार क्रिया, शिल्प एवं तकनीक के अतिरिक्त कृति को आकर्षित बनाने के लिए अपने मानसिक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा नवीनता लाने के लिए अनेक युक्तियां खोजता है। जो ये खोज करता होता है वो ही एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एवं एक अच्छा इंसान होता है। ये सारे शब्द आज के आमंत्रित मेहमान की शान में पड़े गए हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिचर्चा, जहां हम बात करते हैं कला की, संस्कृति की और रंगमंच की। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज के मेहमान इन तीनों विधाओं में माहिर हैं और गौरव इस बात का है कि अनिल कुमार यादव जी मेरे शिष्य भी हैं। करते हैं स्वागत श्री अनिल यादव जी का, जो एक राइटर है, एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है।
1: पहले तो मैं इस FM का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और आप मेरे गुरु जी हैं और मुझे अपने पे फक्र फील हो रहा है कि मैं अपने गुरु के सामने मैं इस परिचर्चा में शामिल हुआ हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। ये बातों का सिलसिला इस कार्यक्रम के दौरान हमारा चलता रहेगा। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को अपने अंदाज में दें।
1: पहले तो मैं सुनने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। अपने बारे में मैं ज़्यादा नहीं, छोटी सी बात में कहना चाहूँगा कि मेरा जो जन्म है अम्बाला छावनी में ही हुआ है, लेकिन जो मेरा लालन पोषण अगर कहें तो यूपी, उत्तर प्रदेश फैज़ाबाद में जो अयोध्या के पास है वहाँ पे हुआ। मेरा जो आरंभिक शिक्षा है 5वीं तक मैंने वहीं से ग्रहण की। उसके बाद मैं अम्बाला आया, फिर यहाँ से मेरे जितने भी क्वालिफिकेशन है वो अम्बाला गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ हुई। उसके बाद आज मैं PhD स्कॉलर हूँ कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैं फिल्म में PhD कर रहा हूँ। तो ये मेरी छोटी सी एक है।
0: तो जो आप PhD कर रहे हैं तो ये फिल्म मेकिंग और फिल्म प्रोडक्शन के बारे में ही आप PhD कर रहे हैं?
1: ये सर मैंने, क्योंकि क्या है PhD का एक रूल है कि आपको पहले देखना होता है कि किस चीज़ पे रिसर्च हो रखी है। तो मैंने बहुत सारे 100-150 रिसर्च मैंने पढ़ी, बुक्स पढ़ी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जिस पे रिसर्च नहीं हुई है उस पे करना चाहिए। एक है सिमियोटिक्स या मिजन सीन हम बोलते हैं, सिमियोटिक्स का पार्ट है जिसके अंदर साइन सिंबल के थ्रू हम फिल्म को प्रेजेंट करते हैं।
0: ठीक।
1: तो इस पे अभी तक इंडिया के अंदर PhD नहीं हुई है, अगर हुई है तो एक शोध के रूप में हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो विषय है वो सिमियोटिक्स रखूँ
0: जी।
1: तो सिमियोटिक्स में कई सिद्धांत हैं, अलग अलग लोगों ने दिया है, तो उनको लेकर मैं करूँगा। जैसे सर धुआं उठता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, आग लगी है तभी वो धुआं उठा है, तो इस तरह सिमियोटिक्स मैं यूज करूँगा PhD में।
0: हमें इस बात की भी खुशी है कि अम्बाला में हमें एक PhD यानी एक डॉक्टर जिसको कहते हैं, एक उपलब्धि हासिल होती है और फिल्म मेकिंग में या फिल्म के साथ जुड़े हुए इन विषयों के साथ हमें एक एक्सपर्ट मिलेंगे, तो अम्बाला के लिए ये एक खुशी की बात है, ताकि आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चे आपसे सीखेंगे। आपने अभी कहा कि आपकी आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या में हुई है, तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कला का सृजन उसी समय से हुआ था?
1: जी सर, जब मैं छोटा था तभी से मेरा एक्टिंग का, डांस का बड़ा शौक रहा है। और वो शौक कैसे चढ़ा, स्कूल में फंक्शंस होते थे तो जो डांस का और एक्टिंग का होता था मैं उसमें सबसे आगे होता था। तो उसका एक छोटा सा किस्सा आपको बताऊंगा कि क्या रहा। टीचर क्या कहते हैं कि ये बुक है, आप लो इसमें से अपने डायलॉग ढूंढ लो। हम हैंड खड़े करते थे, ये रोल मैं करूंगा, तो मैंने ले लिया। तो हम क्या करते हैं, सारे बच्चे कॉपी ले आते थे उस टाइम, 5 रुपए की मिलती थी, पेन मैं लेकर आ गया। मैं कहूंगे 10-12 डायलॉग्स, तो मैं कह रहा हूँ मैं पहले ढूंढूंगा। ढूंढते ढूंढते एक पेज पे सिर्फ एक एक वर्ड का डायलॉग मिला, वो था आक्रमण,
0: बस इतना ही बोलना था।
1: यस, अभी और सुनो सर, फाइनल एंड प्रैक्टिस में अलग अलग आवाज में आक्रमण आक्रमण अलग अलग आवाज निकाल रहा था। जिस दिन फाइनल हुआ उस दिन सामने अर्जुन था, तो मैं सेनापति था, तो मुझे बोलना था। अर्जुन ने पहले तीर लगा दी, चला दी, मुझे डायलॉग नहीं बोलने दिया।
0: अच्छा, जो आक्रमण के बाद तीर चलना था वो पहले ही चल गया, आपका डायलॉग उसमें दब गया।
1: दब गया। अब मैं कहूँ मरूं कि मैं बोलूं, तो मैंने कहा मरना ही सही रहेगा क्योंकि तीर लग चुकी है। तो ऐसा हुआ था। तो मैं बाद में उस लड़के को बोला, मैं कहा यार एक डायलॉग मैंने 2 महीने रटे, अच्छे से आवाज निकाल निकाल के करी, और तूने तीर पहले मार दी यार। तो कह रहा चल अगली बार तू बोल दियो।
0: चलिए, मतलब ये एक आपकी शुरुआत यहाँ से कला के प्रति रही है। तो उसके बाद क्या ऐसा कभी हुआ कि नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं होने दिया?
1: नहीं, उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैंने कहा एक डायलॉग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कुछ ज्यादा। फिर एक्साइटमेंट में करा, तो उसमें मैं हवलदार बनना था, तो हवलदार में थे डायलॉग्स थोड़े बहुत। अब क्या था उसमें, स्टार्टिंग में ढोल लेकर अनाउंसमेंट करना था कि सुनो सुनो आज ये होने वाला है। तो अब ढोल नहीं मिली, टीचर, मैंने कहा सर ढोल नहीं है, फाइनल चल रहा है सर स्टेज पे। कह रहे तू अपने पीछे ना हाथ मार मार के कह सुनो सुनो। मैंने कहा मन में कुछ था, अब बताता हूँ। मैं शुरू हो गया सुनो सुनो और पीट रहा हूँ मैं पीछे से, और बड़ा मजा आता था।
0: अनिल जी, आपने कहा कि जो आपका पहला डायलॉग था और वो आप उस समय नहीं बोल पाए क्योंकि तीर पहले ही चल गया, तो मैं चाहता हूँ कि वो डायलॉग आज आप हमारे श्रोताओं के लिए बोलें, जिन आवाजों में आपने उसको तैयार किया था, आप एक बार उन आवाजों को दोहराएं ताकि एक दिल की तसल्ली हो जाए कि डायलॉग तो हमने बोल दिया।
1: हाँ जी सर, वो था आक्रमण। तो मैंने अलग अलग आवाज, मैंने कहा आक्रमण आक्रमण आक्रमण, तो इस तरह मैंने
0: इस तरीके की आपने तैयारी करी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि आप यूपी के बाद जो आपकी बाकी की शिक्षा है वो अंबाला में हुई, तो अंबाला आगमन कैसे हुआ और अभिनेता बनने का ख्याल कब से आया?
1: यस सर, मैं 5th वहाँ कर चुका था, तो मैं यहाँ घूमने आया था। फादर मेरे यहाँ जॉब करते थे, तो मम्मा के साथ आ गया मैं, तो 1 महीने की छुट्टी थी, तो यहाँ पे रुका, तो यहाँ जो एनवायरमेंट था, बच्चे थे, उनके साथ घुल मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहीं से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ। तो मैं एक स्कूल में गया, तो कह रहे 1 क्लास पीछे लेंगे। मैं इंटेलिजेंट था अपने टाइम में, मैंने कहा पीछे तो मैं जाऊँगा नहीं। फिर किसी ने अप्रोच करे, तो गवर्नमेंट स्कूल में 6 में मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद ये अपना कबाड़ी बाजार में है, जो 12 बजे क्लास लगती थी, तो आराम से 12 बजे पहुँच जाते थे और 5-6 बजे छुट्टी होती थी। तो वहाँ पे भी जैसे डांस का प्रोग्राम होता था 12 बजे, तो वैसे ही। और सारे जो मेरे फ्रेंड थे यूपी के थे, 4-5 फ्रेंड थे, तो और अच्छा लगा। तो इस तरह वहाँ से हमें एक अच्छा सा वो मिल गया, माहौल मिल गया। तो फिर मैंने कहा गांव क्या करने जाना है। फिर थोड़ा सा ये भी रहा कि शहर जो है वो अपने आप में आपको
0: अच्छा, कुछ नई चीज़ें लेके आता है।
1: फिर उसके बाद स्कूल करने के बाद फिर मैं कॉलेज में एंट्री मेरी हुई, तो आपको पता है कॉलेज में जाना मतलब कि आप एकदम वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, नए नए कपड़े सेंट सुंट लगा के, वो एक आता था बहुत महकता था वो, मैंने छिड़का घड़ी पे भी पड़ गया था। मेरे को इतनी ज़्यादा स्मेल आने लगी थी, मैं घड़ी फेंक दिया था मैंने। जब मैं वहाँ पहुँचा तो टीचर पूछते हैं कि आपका मतलब आप क्या बनना चाहते हो। तो सारे बच्चे जी हम डॉक्टर डॉक्टर मतलब डॉक्टरेट करना चाहते हैं, हम
0: इंजीनियर बनना चाहते हैं।
1: इंजीनियर तो हमारे मास कम्युनिकेशन में नहीं होता
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: तो वहाँ पे कोई कह रहा हम रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, हम एंकर बनना चाहते हैं, टीवी में जाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में जाना चाहते हैं, इस तरह का। मेरी बारी आई, कह रहे हाँ नीलम तुम क्या बनोगे। मैं कहा मैं एक्टर बनूंगा। तो वहाँ पे 35-40 बच्चे थे, वो हंसने लगे मुझे देख के।
0: ठीक,
1: तो मैंने सबको देखा, तो सर ने कहा चुप हो जाओ ऐसे नहीं हंसते। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ गया। फिर उसके बाद वहाँ प्रैक्टिस हुई, सब बोलते थे, तो मेरे को टीचर ने, मेरे रविशंकर नाम है गुरुजी का, उन्होंने मुझे कहा कि तू रेडियो में ट्राई करो, तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा सा है दम। मैंने कहा सर मुझे एक्टर बनना है, ना मुझे टीवी में जाना है ना रेडियो में जाना है, मुझे हीरो बनना है। इसलिए तो मैंने किसी से पूछा था, कह रहे ये सब्जेक्ट पढ़, ये फिल्म से रिलेटेड है, यहाँ डांस वांस भी होता है।
0: ठीक है,
1: तो वहाँ से फिर सर ये जर्नी स्टार्ट हुई। हमारे यहाँ प्रेस डे मनाते हैं, तो वहाँ पे खुद लिखी हमने स्क्रिप्ट लिखी, वो था उसका फर्स्ट हमने करा था औरत की दुश्मन औरत, तो उसके हमने स्क्रिप्ट लिखी, उस पर एक्टिंग भी करी। मैं फादर का रोल मैंने करा, तो मैं जिम जाता था ना, तो टीचर कहे तू कहाँ से लगता है फादर, कह रहे ऐसे कौन फादर चलता है एकदम चौड़ा होके। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तो लास्ट में जब मैंने बाल वाल कटिंग कराई, गमछा वमछा डाला, थोड़ा झुक के खुले खुले ड्रेस से डाला, तो सर ने अच्छा वो करा था, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, डांस करना शुरू करा। और उस टाइम में सर नाइट ड्यूटी भी करता था।
0: अच्छा,
1: नाइट ड्यूटी करता था तो यहाँ भी जाना होता है। और सुबह मैं आर्मी स्कूल में एज अ पार्ट टाइम मैं था डांस टीचर, कोरियोग्राफी करता था मैं, वहाँ भी जाना होता था। इसी दौरान जब एक बार घूमते घूमते पता लगा आपके पास, जब हम आए कि वर्कशॉप लग रही है।
0: इससे पहले मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने बात कही उसी में से एक सवाल मेरे मन में आया, वो ये है कि संघर्ष, जब हम जिंदगी में आगे की ओर बढ़ते हैं, आप यंग थे, आप कॉलेज गए, आप यंग अभी भी हैं, बट कॉलेज में ऑब्वियसली हम हमारी जिंदगी शुरू होती है। तो क्या आपका कॉलेज को एजुकेशन था?
1: यस।
0: ओके, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें घर के प्रति और या कोई फिनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो फिनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, तो क्या इस वजह से आपको बाकी काम भी करने पड़ते हैं? आप जैसे आपने कहा कि नई ड्यूटी आप कर रहे थे।
1: फैमिली की तरफ से तो कुछ नहीं था, मुझे लगा कि फादर कितनी इनकम नहीं थी,
0: ठीक है,
1: तो मुझे लगा कि जो शौक है अपने, अगर मैं कमाता हूँ चाहे 10 कमाऊँ 20 कमाऊँ, तो मैं अपने ऊपर
0: उसी से पूरा करूँ,
1: उसी से पूरा करूँ
0: जी।
1: तो वो तो मना करते थे, तू नाइट ड्यूटी क्यों कर रहा है, मैं कमा तो रहा हूँ, लेकिन अच्छा। मेरा दिल नहीं मानता था। मैं क्या क्या करूंगा यहाँ, फिर इधर उधर घूमूंगा। तो उस टाइम मेरी पढ़ाई भी मैं रात को कर लेता था साथ में, जब मैं कॉलेज में था ये चीजें तो थी। लेकिन कहते हैं कि गुरु बिना कोई गति नहीं है
0: जी।
1: ये तो देखो सर, एक दोस्त है, दूसरे दोस्त कहता है यार तू बहुत अच्छा डांस करता है, एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होता। हर कोई अगर आपको जो पसंद करता है वो तो कहेगा, हर माँ के लिए
0: एक बच्चा तो लाडला ही है,
1: काला पीला वो लाडला ही होता है, सुंदर होता है, टीका लगा देते हैं तो इसी तरह। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था। और उस टाइम सर ज्यादा दिन की तो बात है नहीं, 2007-08 की बात है, तो इस टाइम जो एक खुमार चला फिल्मों का, तो उसमें ये था अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वो मैं था नहीं। उसके साथ ही मेरा अच्छा डांस आना चाहिए और
0: अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए।
1: मैंने कहा शकल तो चलो कोई नहीं, मेकअप वेकअप करके एक दो फोटो खिंचाए उसमें तो अच्छा लग रहा था। मैं कहा चलो वो तो मैं कर लूंगा,
0: मैनेज कर लेंगे।
1: तो कॉलेज में कई बार ऑडिशन हुआ करते थे यूथ फेस्टिवल के लिए, आते थे कई, आए थे उन्होंने, नाम नहीं ले सकते क्योंकि सब अपनी हाँ, जगह गुरु गुरु हैं, बट जब वो बोलते थे कि इस तरह करो, तो मुझे कहीं ना कहीं वो फील नहीं आता था। मैंने कहा ये तो ऐसे है कि आप चिल्ला रहे हो, चिल्ला के आप एक्टिंग नहीं दिखा सकते, बट कहीं ना कहीं उनको चाहिए होगा उस वाले
0: शायद किरदार की जरूरत उस समय वो,
1: लेकिन मेरे को ये नहीं था। तो मुझे लगा कि यार नेचुरल एक्टिंग, आप आराम से प्यार से बोलो जैसे हम रियल में बोलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आप दे लो, आप सिखाने आए हो, आप पहले से चाहते हो कि सिखा हुआ बच्चा आपके पास आए, तो फिर आप सिखाओगे क्या। तो फिर इसी तरह मुझे पता लगा कि
0: यहाँ भी मैं आपको रोक लेता हूँ अभी हम आपकी जो ये जर्नी है, हमें जिज्ञासा है इसके बारे में सुनो, और हमारे जो श्रोता हैं उनको भी जिज्ञासा हो रही होगी ये जानने के लिए कि आगे जब आपको लगा कि अगर मुझे कोई भी काम करना है उसके लिए मुझे पहले सीखना जरूरी है, फिर आपने क्या किया है। बट मैं चाहता हूँ आपसे ये पूछूं पहले, तो क्या संगीत की आपने अभी बात की, डांस की आपने बात की, तो क्या संगीत के साथ आप जुड़े हैं, क्या संगीत आप सुनते हैं?
1: सभी को पता है कि संगीत के बिना एक तरफ से जीवन व्यर्थ। अगर हम भी कहीं बैठे होते हैं सुकून के लिए हम म्यूजिक सुन लेते हैं, रिलैक्स, आजकल एक थेरेपी हो गई है कि आप म्यूजिक पढ़ो सुनो, आप स्ट्रेस से बाहर आ जाओगे। संगीत तो एक तो कहते हैं ना, एक टाइम ऐसा आ गया था कि संगीत ना सुनो तो नींद नहीं आती थी मुझे। और फिल्म लाइन में तो एक छोटी सी छोटी चीज के लिए भी म्यूजिक का बहुत ज्यादा रोल है
0: जी।
1: तो म्यूजिक तो एक अहम है, और इस तरह जो हमारी जिंदगी चल रही है तो उसमें अगर म्यूजिक ना हो तो वो बेरंग हो जाएगी।
0: तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा गाना आपका जो पसंदीदा हो हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे और ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कौन सा ऐसा गाना है जो आपके मन में इस समय आ रहा है?
1: मैं सर लाइफ यानी जिंदगी की बात कर रहा हूँ
0: जी,
1: तो मैं ज्यादातर इस एक गाना है जो मैं गुनगुनाया करता हूँ, और जो उतार चढ़ाव है उसके लिए मुझे लगता है ये जो सॉन्ग है ये उस पे फिट बैठेगा। वो है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।

0: अनिल जी, अगर अभिनय की ओर दिलचस्पी थी तो डांस भी क्या मन को भाता था?
1: मुझे जो लगता है कि जो डांस करना, उस सॉन्ग के ऊपर एक्सप्रेशन देना, वहीं से तो एक एक्टिंग की शुरुआत हुई। कि मुझे लगा कि देखो, डांस में तो हम एक्सप्रेशन इधर उधर मुंह बना लेते हैं, लेकिन रियल जब आप बोलते हो, उसके साथ जो एक्सप्रेशन आना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए एक्टिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: तो क्या हम ये मान के चलें कि जब एक एक्टर घर से बाहर निकलता है तो जितने लोग आसपास होते हैं तो क्या उनकी नजर उनके एक्सप्रेशंस पे रहती है, ताकि वो ये समझ जाए कि किस किरदार की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए?
1: यस सर, जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम रियल लाइफ में भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन से, हाव भाव से पता लग जाता है कि ये बंदा क्या कहना चाहता है या जो बोल रहा है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा
0: ऐसा हो सकता है?
1: है।
0: ये बात
1: ऐसा
0: तो
1: हो
0: बहुत आपने बहुत आपने
1: सकता
0: पते की बताई, यानी कि अगर हमने गुस्सा करना है तो हम हंस के गुस्सा नहीं कर सकते, कि वो दो चीजें आपस में मेल नहीं खाती है। तो गुस्सा करना है तो हमें चेहरे पे ऐसे भाव लाने पड़ेंगे ताकि वो गुस्सा दिखे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अभिनय जुनून से, दृढ़ता से, पक्के मन से होता है। क्या ऐसे भी समय आया कि एक्टिंग आप करना चाहते थे पर समय अनुकूल नहीं था?
1: यस सर, अभी मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहूंगा कि जब मैं कॉलेज में था, एक तो नाइट ड्यूटी किया करता था मैं, तो 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी होती थी। वहां रात भर जागना होता था, आप सो नहीं सकते थे, और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक क्लासें होती थी
0: आपका
1: कॉलेज की।
0: कॉलेज? जी
1: अब उसके बाद 5 से 6 आपको कंप्यूटर सेंटर भी जाना है,
0: जी
1: तो अब जो 3 बजे से 5 बजे का जो टाइम है उसके अंदर आपको खाना भी है,
0: और आराम भी करना है।
1: आराम भी करना है। तो मैं सोचता था आराम तो पूरी जिंदगी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी जो एक एज है उसमें जितना ज्यादा सीखो उतना कम है, क्योंकि हमारा शरीर उस टाइम हमारा साथ दे रहा होता है कि भाई अभी पावर है, तू चाहे ना भी सो तो कोई बात नहीं है, संडे तो है, उस दिन सो लियो किसी दिन। तो जब मैं कॉलेज में था, आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि जब हम कॉलेज में थे, एक गुरु की खोज मैं कर रहा था, तब मेरे फ्रेंड ने बताया कि कहीं वर्कशॉप है, उसका नाम प्रीतम है, हम साथ में रहते थे।
0: जी
1: तो मैंने कहा चल चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा देख, गुरु तो चाहिए चाहे जैसे करके। अब मुंबई तो हम जा नहीं सकते, एक तो इतनी खतरनाक कहानियां हमने सुनी होती है मुंबई के बारे में, तो सोचे नहीं। तो हमने कहा क्यों ना अम्बाले में देखे। तो हम एड्रेस हमें मिल गया था, हम घूमते हुए निकले, ढूंढ रहे कहाँ है कहाँ, कोने पे। जब हम अपना गांधी मार्केट के उस लास्ट में इंदिरा पार्क जो पार्क है वहाँ पहुँचे, तो देखा कि ऊपर है, तो हम ऊपर गए। तो मुझे लगा कि हम दो थे, बाकी आने वाले थे, कोई आया नहीं था। तो उस टाइम आपसे मुलाकात हुई सर। तो अब मैं आपको बताऊं, शायद आपको भी नहीं उस टाइम पता होगा, तो ये था रजिस्ट्रेशन फीस थी उसमें, तो हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा करना पड़ेगा, तो उसके पास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चल दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। फिर मैंने उससे पैसे लिए, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया, और 10 दिन हमने जो वर्कशॉप है किस तरह बोलते हैं, आपने सर बताया था, मैं अभी जो पहले मैंने जो बातें बोली है वो आपसे सुन के ही बोली थी। ये तो आप, मैंने अपनी तरफ जब आपने तारीफ कर दी कि आपने बड़ी बात बोल दी, जब मैं वर्कशॉप ले रहा था तो आपने ही बताया था। एक आपने कहा कि अच्छा, एक जिसका पैर खराब होगा वो कैसे चलेगा, हमने सबने चल के दिखा दिया। तो कहा कि कैसे, ये आपने कैसे करा, हमने कहा जी फिल्मों में देखा। सबने कहा फिल्मों से देखा, नॉर्मल यही बोला कि फिल्मों से देखा। फिर आपने बताया कि अगर मान लो एक सब्जी वाला है, अगर उसका रोल करना हो तो मैंने बोला फिल्मों में देख लेंगे। फिर आपने बताया कि जो आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने से आपको कई नए नए करेक्टर मिल जाएंगे। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मैं जहां भी हूं, मैं कभी भी फिल्मों में किसी भी करेक्टर को मैं कैच नहीं करता हूं। मैं बस में जाता हूं या कहीं भी जा रहा होता हूं, मैं लोगों के चेहरे देखता हूं, और मैं अपने में खुश रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मुझे कई करेक्टर रियल लाइफ से मिलते हैं। तो वहां से मैंने या आप जब सीखा तो मैं आपको, आप भी थे वहां पे, आप सिखा रहे थे, तो जो किस्सा मैं वो श्रोता जो है मैं उनको बताना चाहूंगा। 10 दिन का था, बहुत अच्छा लगा। हमारे लास्ट जब हमें करना था इसको सुभाष पार्क में इसका

0: तो वो फिर वो कैरेक्टर फिर मैंने करा, उसमें रोने का भी था, चूड़िया तोड़ के उसके छाती के ऊपर
1: जी
0: मारना, मैंने तेजी से मार दिया था उसके, करो धीरे मारो, तो ये हो गया था। फिर उसके बाद जब फाइनल जब हुआ वहां पे, और ये बहुत अच्छा था सर, आपने देखो कई बार क्या होता है बच्चों को जब हम ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना वो घबरा जाता है,
1: ठीक
0: तो जब वहां पे था ऑडियंस को इकट्ठा करना, अब
1: पार्क में जो
0: पार्क
1: चलते हुए
0: के,
1: लोग हैं
0: यस,
1: उनको
0: तो
1: अट्रैक्ट करना, बुलाना।
0: हाँ,
1: जी
0: अब कह रहा कि भाई चलो अब इनको बुलाओ, अब सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। आपने कहा अनिल, मैं भी देखा, मैं कहा ये क्या, मैं कहा बोलूं क्या। फिर मुझे वो जो बताया आपको कि बचपन में जो सिपाही था वो ढोल बजाते बजाते, मेरे को याद तो वही आया था, तो हमारे पास वो बजाने वाला था, तो मैंने
1: डफ
0: डफ,
1: जी,
0: तो डफ लेकर फिर हमने शुरू करा, सुनो सुनो, फिर वहां पे जो है,
1: काफी सारे लोग आए थे और हमारा वो पहला वह थिएटर ग्रुप का वो पहला एक्सपीरियंस था कि जो हमने कहीं स्टेज के बाहर किसी जगह किया था, जहां हमने लोगों को इकट्ठा किया। और उसके बाद मुझे याद है उस नाटक का नाम, छोटे नाटक का नाम था बेल नींबू, और इसको डायरेक्ट किया था अतुल वशिष्ठ ने, जो हमारे वीटी जी के मेंबर उस समय थे।
0: यस
1: और जिंदगी बहुत आगे की ओर बढ़ती है, जितने भी लोग वह थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े, बहुत सारे लोग तो आगे की ओर बढ़े, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज भी हमारे साथ कोई संपर्क नहीं है। पर हम आपकी बात पे आते हैं, तो आपने ये कहा कि जो एक अभिनेता है उसको ये ऑब्जर्व करना जरूरी है जब वो घर से निकलता है, तो किस व्यक्ति की क्या हाव-भाव है वही आप किसी किरदार में आप डाल सकते हैं।
0: यस
1: तो वह थिएटर ग्रुप के साथ जो आपके जो जर्नी शुरू हुई थी, क्या आपने इससे पहले भी यहाँ अंबाला में किसी ग्रुप के साथ काम किया था या ऐसे किसी नाटक में परफॉर्म किया था?
0: आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में सर, गुरु तो कोई था नहीं, बस अपने जिधर लिखना है लिख लो, बोलना है बोल लो, कैसे बोलना है सिंपल चल रहा था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था, तो उसके लिए एक गुरु की खोज में लगा हुआ था कि कोई मिले, कईयों से मिला था मैं, तो मतलब मुझे वो फील नहीं आ रहा था कि यार ना कहीं कमी है। तो फिर जब मैं आपका वर्कशॉप था वो लगाया, और सबसे बड़ी बात मैं उसको अच्छा डे बोलूंगा अपनी लाइफ का कि एक साथ मैंने तीन किरदार निभाए थे, और मैं शायद, मुझे लगता है कि ऐसा कम मौका मिलता है लोगों को, एक अपोजिट करेक्टर, एक फीमेल
1: करेक्टर
0: आर्टिस्ट
1: करना
0: भी, और वो भी 2 दिन पहले उसके डायलॉग्स याद करके उसको प्ले करना, सब्जी वाले का रोल प्ले करना, और ऑन द स्पॉट एक अपना लोगों को इकट्ठा करना, मुनादी
1: मुनादी
0: अनाउंसमेंट
1: अनाउंसमेंट
0: का,
1: करना
0: हाँ, तो ये चीजें सर बहुत अच्छा लगा। उस चीज को फॉलो करते हुए आज अच्छा लगता है जब हम सामने वालों को बताते हैं, उसे भी बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करो, कई बार क्या होता है ऑब्जर्व नहीं करते हैं उन्हें फिल्मों के, कई बार बिजी भी रहते हैं, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आप ये कैरेक्टर लो और आप अच्छे से काम कर सकते हो।
1: देखिए अनिल जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वह थिएटर ग्रुप के साथ आपने वो समय हमारे साथ बिताया। एक ग्रुप कोई सा भी हो, वो तभी चलता है जब वो निरंतर काम करता है, और ऐसे ही निरंतर काम अनिल जी ने भी किया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि वह थिएटर ग्रुप भी बहुत खुश होता है आपके काम से, और आज आप अच्छे फिल्मकार हैं, आपने कई सारे अपने फिल्में बनाई हैं, हम उस विषय में भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि उसी वह थिएटर ग्रुप के माध्यम से अंबाला कैंट को ये पहला एफएम स्टेशन मिला है, और आज भी आप ये मान के चलें कि आप वह थिएटर ग्रुप के साथ ही जुड़े हैं और आज इसका हिस्सा बने हैं। एक हम और गाना यहाँ पर लेते हैं अनिल जी की पसंद का। श्रोताओं, आप सुनिए ये गाना और हम एक ब्रेक के बाद आपके साथ फिर रूबरू होंगे।

0: अनिल जी, मुझे याद है एक बार आपके कॉलेज में आया था, आपके सहयोगियों ने आपने बहुत मान सम्मान दिया था, आप मुझे अपने कॉलेज के रिकॉर्डिंग रूम में भी ले गए थे। आज बारी हमारी आई है आपको अपने रिकॉर्डिंग रूम में आमंत्रित करने का, कैसा लग रहा है?
1: सर बहुत अच्छा लग रहा है, जब आप आए थे तो मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा खुश था, तो मतलब मैं चाह रहा था कि अपने गुरुजी को मैं सारी चीज़ें दिखा दूँ कि सर मैंने ये चीज़ मंगवाया, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए। मैं सभी सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि जब सर मेरे पास आए थे तो मैं एस ए जैन कॉलेज अम्बाला सिटी, वहाँ पर मैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं कार्य कर रहा था। मास कम्युनिकेशन जो मेरा डिपार्टमेंट था उसमें मैं बच्चों को, मेरा ज़्यादातर फोकस होता है प्रैक्टिकल में। मैं 5 साल एस ए जैन कॉलेज में मैंने वहाँ सर्विस दी है। मैं वहाँ कैसे पहुँचा मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं फिल्मों में जाना चाहता था, मैं टीचिंग में कैसे चला गया। मेरे एक सर हैं अतुल यादव सर, हिस्ट्री वाले टीचर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा कि बेटा तुझे कितनी फिल्में मिल जाती हैं, मैंने और कब कब मिलती है। मैंने कहा साल में एक आधे तो मिल ही जाती है। कह रहे पैसे मिलते हैं, मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर फैमिली कैसे चलाओगे। मैं सोचा कि ये बात तो सही है, तो उन्होंने कहा बेटा साइड बाय साइड इनकम का सोर्स रख, जिससे तेरा परिवार भी चले, ये शौक तो चलते रहेंगे।
0: ठीक है,
1: तो उनकी बात मान के फिर मैंने उस टाइम प्रिंसिपल थे प्रदीप स्नेही सर, उनके पास मैं गया, इंटरव्यू हुआ, मेरी सिलेक्शन हुई, तो मैंने वहाँ ज्वाइन करा। 5 साल काम करने के बाद कोरोना के बाद फिर मैं वहाँ, ये अकाल डिग्री कॉलेज है संगरूर में, वहाँ पे मैंने 1 साल सेवा दी। उसके बाद जेएमएन कॉलेज में 1 साल पढ़ाया। जब यहाँ पढ़ा रहा था तो मेरी पीएचडी में मैं इन्वॉल्व हो गया। फिर उसके बाद मैं कुरुक्षेत्रा चला गया, जहाँ अब मेरा गाइड मुझे अलॉट होंगे जिनके अंडर मैं पीएचडी।
0: ये जो जिंदगी का सफर है, इसके लिए जो हमारी पढ़ाई लिखाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर मरहले पे हम कुछ नया सीखते हैं और तभी जाके हम जिंदगी के साथ रूबरू होते हैं। आगे चलते हैं, आपकी उपलब्धियां तो अब बहुत हुई हैं, श्रोताओं को आप खुद ही विस्तार में बताएं कि आपने फिल्म बनाने में या आपने जो बहुत सारे भजन हिंदी और पंजाबी में या हरियाणवी में आपने तैयार किए हैं या कुछ और आपने किया है, तो कृपया आप विस्तार में बताएं।
1: जब इस लाइन में आया तो पहले जितने भी शॉर्ट्स फिल्में हैं, मैं पहले बताना चाहूँगा कि 30 से 40 फिल्में, शॉर्ट फिल्में मैं कर चुका हूँ। 2 फीचर फिल्म है जो भोजपुरी में थी, वो हाफ हो गई थी, बजट की वजह से वो रोकनी पड़ी है। उसके बाद भोजपुरी कम से कम 60-70 गाने हैं जिसमें मैं एज एक्टर मैंने काम करा हुआ है। उसके बाद पंजाबी और हरियाणवी डिवोशनल सॉन्ग, उसमें भी एज अ मॉडल मैंने वर्क करा हुआ है, और साथ में एडिटिंग भी मैंने करा है, जो सोनी टेक और कई अच्छे अच्छे चैनल्स जो है उन्होंने सेलेक्ट करा था। तो इस तरह काफ़ी सारा, और अभी मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हमारे टाइम लाइन पे है, हम उस पर काम करेंगे।
0: यहाँ पर मुझे आपने एक बात कही कि आपने भोजपुरी में भी बहुत सारे गाने किए हैं और तैयार किए हैं, तो भोजपुरी क्या वो भाषा है जो आपके बचपन के साथ जुड़ी है, जब आपने, जहाँ आपका जन्म हुआ, और क्या वहाँ पर ये बोली जाती है या आपके घर में भी भोजपुरी या अवधी बोली जाती है?
1: सर अभी यहाँ पे जैसे हम दूर रहते हैं तो लोगों को ज़्यादातर जो फिल्में सुनते हैं देखते हैं वो भोजपुरी उनको लगता है। यूपी में अवधी बोली जाती है।
0: अच्छा,
1: भोजपुरी अलग एक बिहार की एक भाषा है जो बोली जाती है, वहाँ फिल्म जो है वो ज़्यादा उठ चुकी है, इसलिए भोजपुरी सबके ज़ुबान पे होती है। कोई यूपी से भी आता है तो उसे भी भोजपुर का बोलते हैं, लेकिन जो अवधी है बॉलीवुड में भी यूज़ की जाती है। ये मैं उस शहर से हूँ, उस स्टेट से हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाती है, लोग भोजपुरी बोल देते हैं लेकिन अवधि होती है।
0: अच्छा, वो अवधि होती है, वो भोजपुरी नहीं होती है।
1: नहीं होती है।
0: तो आपने इतने सारे, आपने कहा कि गाने आपने किए हैं, कुछ फिल्म्स भी है जो बाद में तैयार कंप्लीट नहीं हुई, तो क्यों ना हम आपसे भोजपुरी में या अवधि में, जिसको हम भोजपुरी कहते हैं असल में वो अवधि है, तो कुछ आप हमें सुनाइए और हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए।
1: मैं 2 लाइनें गुनगुना दूंगा।
0: जी जी।
1: उसको थोड़ा अवधि वाले भी अब क्या कर रहे हैं कि कमर्शियल के चक्कर में वो थोड़ा भोजपुरी टच मार देते हैं। मैं कहूँगा ये मेरी एल्बम का भी गाना था और ये गाना मैंने लिखा था उस टाइम था, ये था टाइटल सॉन्ग था भौजी तोहार बहिनिया। तो उस टाइम क्या था, थोड़ा शहर से लोग गांव जाते थे, लड़कियां भी जाती थी ना, तो जींस विंस का बड़ा वो रहा है। तो मैंने लिख दिया था और ये लिखा था मैं जब छोटा था तब, लेकिन मौका मिला था बहुत टाइम, तो मैं उसको थोड़ा सुनाऊंगा। ये था अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली, अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली, जब चला तय रोड पे, जब चला तय रोड पे छुरिया चल जाइल हो, अरे भौजी तोर बहिनिया जींस पहने ली। ये सब
0: बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छे से पेश किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये होता है कलाकार जो किसी भी जगह पर कहीं पर भी अपनी प्रस्तुति देता है, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता है उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक ये थोड़ा सा हमारे जो इंटरव्यू है उसमें एक ये थोड़ा सा चेंज आया। आपसे इसी के साथ जुड़ता हुआ एक सवाल और करना चाहूंगा, आपकी फिल्में ज्यादातर सामाजिक विषयों पर बनी है, ऐसा क्यों?
1: सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ज्यादातर जैसे यूपी से बिलोंग करा और मैं स्टेशन पे रहा तो मैंने लोगों को देखा। अगर आप किसी की सेवा करना चाहते हो तो धन से कर सकते हैं, तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। अब ये तीनों मेरे पास नहीं था,
0: ठीक है,
1: पैसे भी नहीं थे और मन से हम सेवा कभी कर नहीं सकते, उसके लिए शरीर का यूज होगा। अब उस टाइम मेरे पास समय नहीं था कि मैं टाइम दे सकूं। तो मेरा ख्याल आया कि जो वीडियो है या फिल्म है वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप उन लोगों तक भी अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं जो आपको नहीं जानते या आप उनसे कभी मिले नहीं हो। तो फिल्म जो एक, जैसे मैंने कहा, एक माध्यम है। तो मैंने सोचा कि जो मैं अगर पैसों से या किसी की हेल्प नहीं कर सकता तो मैं क्या छोटी छोटी फिल्में बना के मैं लोगों को जागरूक करके उनको किसी नुकसान से बचा के या किसी चीज़ का क्या नुकसान है, इन चीज़ों को लेकर मैं फिल्में बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं फिल्मों के जरिए मैं एक समाज सेवा कर सकूँ, इसलिए मेरे जितने भी फिल्में हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कई बार कोई मुझे यह ना कह दे अच्छा ये अनिल यादव वो है जो सामाजिक फिल्में बनाता है।
0: जी जी।
1: तो बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। सर
0: देखिए, समाज के अंदर रह के हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से अपना योगदान देता है। आपने बहुत ही सही तरीका ये चुना कि अगर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है फिल्म या म्यूजिक के द्वारा आप तक उस तक पहुंचते हैं, और ये चीज जो आपने सोची और ये काम कर रही है, आपके फिल्में हम भी देखते हैं। जब आपकी कोई भी फिल्म आती है तो हम अपना समय निकाल के उसको देखते हैं, हमें पता है कि उसमें कोई एक सामाजिक सरोकार होगा, उसमें कोई शिक्षा होगी जो लोगों के लिए काम आएगी। इसके साथ ही मुझे याद आ रही है एक फिल्म आपने स्नेह बनाई, और उस स्नेह में भी आप लोगों ने, और जो उसके निर्माता सुभाष बंसल जी हैं, और आप लोगों ने एक ऐसा मुद्दा उसमें लिया जो कैंसर के ऊपर था, और आप लोगों ने लोगों को ये बताना जरूरी उसमें समझा, और आपने बखूबी उसमें बताया कि कैंसर की लड़ाई के लिए हमें पीछे कभी रहना नहीं चाहिए और आखिरी दम तक हमें उसके साथ लड़ना चाहिए। हमने एक वेथ थिएटर ग्रुप के ओर से एक नुक्कड़ नाटक अम्बाला में किया था जिसमें हमने कैंसर के लिए लोगों को जागरूक किया था, तो वो फिल्म हमें बहुत पसंद आई और बहुत सारे लोगों ने आपको उसमें सराहा भी। तो ये आपका जो सोचना है कि शाबाशी देता हूं, आपने ये सोचा कि अगर हमने एक व्यक्ति तक पहुंचना है तो फिल्म के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। अब आप एक फिल्म्स के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और इस नाम से अब आपको जाना जाता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा और श्रोताओं को भी हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है।
1: सर जो द एके फिल्म प्रोडक्शन है ये बेसिकली मैंने इसलिए खोला कि ताकि कुछ जिनको नीड है जो इसमें काम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं हम शूट करते हैं हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने ये फर्म को रजिस्टर करवाया। तो जितने भी सोशल इश्यूज हैं सारी फिल्में मैं इस पे डाल देता हूँ, फ्री है, कोई मैं कहीं बेचता भी नहीं हूँ। मैं अभी जैसे फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड होती है, उसके ऊपर बनाया था, जैसे आपने बताया कैंसर के ऊपर बनाया, एक बायोपिक गो रवि गो बनाया जिसमें सारी जो डबिंग हुई है यहाँ पे भी हुई है, आपने एक कीमती वक्त दिया था हमें। इसी तरह एडिक्शन पे हमने काम करा हुआ है, नशे के ऊपर काम करा, रोड सेफ्टी, इसी तरह बहुत सारी है। मैं जो सुनने वाले हैं उन्हें भी कहता हूँ कि आप फिल्मों को एंटरटेनमेंट के पर्पज से तो देखते हो, साथ में जो उसका मैसेज होता है उसको जरूर देखें और लोगों को शेयर करें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। सर, जो आपने सवाल पूछा कि आने वाला मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, मैं सुनने वाले दर्शक को बताना चाहूंगा कि जो टाइटल है वो एडिक्शन है। जी हाँ, एडिक्शन आपके दिमाग में आ गया होगा, नशा, लेकिन एडिक्शन नशा ही नहीं, आज एक एक जो सबसे बड़ी समस्या जो बनी है वो है मोबाइल फोन। जी हाँ, मैं मोबाइल फोन के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ जिसे लिख चुका हूँ मैं, सभी को बहुत अच्छी लगी है, मैं इस पर जल्द काम करने वाला हूँ और करेक्टर भी सर्च कर रहा हूँ, जिसपे गुरु जी को इंस्पेक्टर का रोल मैं दे रहा हूँ, अहम रोल, क्योंकि इंस्पेक्टर को गलत नजरिए से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है वो अच्छा, एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल फोन है वो बड़े तो चलो कहीं ना कहीं उनके पास टाइम होता है वो लगा तो लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उसका वो मिस यूज कर रहे हैं, वो किस तरह उससे एडिक्ट होते हैं, ये छोटी सी स्टोरी है। तो मैं चाहूंगा कि जब बन जाएगी तो हमारे गुरुजी उसके बारे में बताएंगे, तो आप सर सभी उसे जरूर देखें।
0: आपने सही कहा कि कोई भी सुविधा हमें मिलती है उसका सदुपयोग भी किया जाता है और उसका दुरुपयोग भी होता है, और मोबाइल खास करके इस समय हम सबके लिए एक परेशानी का बाइस बना है। इवन जो बड़े लोग हैं, अगर घर में कोई बात सीरियस चल रही होती है और बीच में मैसेज का टोन बजता है तो हम मोबाइल उठा के देखते हैं कि वो मैसेज किसका है, तो जो सीरियस बात चल रही होती है उसमें भी विघ्न पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बहुत अच्छी बात है, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये सबको छुए और ये सबको एक मैसेज अच्छी तरह से दे पाए। हम मोबाइल को जरूर यूज करें पर एक लिमिट तक यूज करें, ताकि ये हमारे लिए कल को कोई परेशानी का बायस ना बने। अनिल जी एक्टर है, राइटर है, एडिटर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और क्या ऐसा लगता है कि कुछ रह गया है जो अभी करना बाकी है?
1: एक सपना है सर, वो रह गया।
0: जी बताइए उस सपने के बारे में। और
1: थोड़ा गला खराब हो गया है, कोई सुनने वालों के लिए माफी चाहूंगा। मेरा सपना सर ये है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलूं जहां बच्चे सीखना चाहते हैं, जिन पे पैसे नहीं हैं,
0: जी,
1: बस वो शिद्दत के साथ वो सीखें, जैसे फिल्म बनाना
0: जी।
1: और वैसे मैं कहूं कि मैं मुंबई को अंबाला में लाना चाहता हूं, ये मेरा एक सपना है सर।
0: बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं भी अपनी तरफ से ये कहना जरूर चाहूंगा कि मुंबई जाने के बजाय अगर हम घर बैठ के ये काम करें तो सबसे अच्छा है। उदाहरण के तौर पर हमने 2 साल पहले अंबाला में ही एक दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बना जिसमें हम लोगों ने काम किया, और वो अंबाला में ही शूट हुआ और पूरे हमारे देश में वो दूरदर्शन नेशनल पर 2 बार आज तक टेलीकास्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते हैं, बट अगर हम मुंबई जाते भी हैं तो मेरी राय ये है कि अच्छी तरह से तैयार होके अगला कदम मुंबई के लिए आप उठाएं, और कल को ऐसा ना हो कि मुंबई जाके आपको अगर कामयाबी नहीं मिलती है तो पीछे मुड़ के आना आपके लिए मुश्किल हो। हम इस कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं और एक पर्सनल सवाल अनिल जी से, काम और परिवार का संतुलन आप कैसे बनाते हैं?
1: सर ये बहुत मुश्किल सवाल है, बट अगर आपको सपने सच करने हैं तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को हम कहीं ना कहीं उनको मैनेज करते हैं, मैनेज मतलब कि हम उनसे सलाह लेते हैं कि मुझे एक मुकाम हासिल करना है, आप हमारा साथ उसमें दो। तो मेरी धर्म पत्नी है, मेरे ब्रदर है, मेरी मदर है, ये हमेशा मेरा साथ देते हैं, ये कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ तो ये सपोर्ट करते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अच्छा मुकाम हासिल करना है।
0: ये आपने एकदम सही कहा कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो जब तक परिवार का साथ ना हो तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं।
1: सर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं सुनने वाले जो श्रोता हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि बीटीसी जो ग्रुप थिएटर ग्रुप है मैं इसके साथ आज भी जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा, और साथ में जो वितस्ता जो रेडियो है FM मैं इसके साथ भी जुड़ा हूँ और मैं इसके साथ जुड़ा रहूँगा, और मेरे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं मैं सर से डिस्कस भी करता रहता हूँ और मुझे अच्छे गाइड भी करते हैं सर।
0: अनिल जी आपका ये आपका बड़प्पन है कि आप जब भी कोई काम करते हैं और उसमें अगर आप राय लेते हैं, हमें राय तो ज़रूर सबसे लेनी चाहिए पर करना वही होता है कि जो हमारे मन में है, पर उस राय लेने से कुछ न कुछ रास्ता हमारा क्लियर हो जाता है। रेडियो वितस्ता और वह थिएटर ग्रुप हमेशा द AK फिल्म्स के साथ है, और मुझे याद है आपने एक कार्यक्रम शुरू किया था, आपने उसकी शुरुआत मेरे जीवन के ऊपर आपने इंटरव्यू किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आप आए और हम मैं भी अपने जीवन के बारे में और जो मेरी जीवन यात्रा थी उसके बारे में कह सका। इस प्रोग्राम का अब समय समाप्त होने जा रहा है। अंत में मैं अनिल जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप FM 90.0 MHz के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
1: मैं अपने सुनने वाले, अपने चाहने वाले और जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं और जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अपने सुनने वालों को मैसेज क्या, मैं एक राय, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा जो हर किसी को उसको फॉलो करना चाहिए। कभी भी कोई भी काम करना हो उसके बारे में अच्छे से सोच लो। अगर वो काम नहीं होता है तो कभी भी उदास नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, उस पे और मेहनत करनी चाहिए, ताकि क्योंकि जितनी बार आप हारोगे उतनी बार आप सीखोगे। सीखने से बंदा आगे बढ़ता है, कभी भी पीछे अगर आपको कोई ढकेलता है आप उसे हताश नहीं होना है, आगे बढ़ते जाना है। जैसे रेडियो वितस्ता का एक पंच लाइन है, हम सफर जिंदगी का, इसी तरह आपकी जो जिंदगी है उसको हंसी खुशी हंसते गाते गुजारते रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, आप आज आपने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें कही, और मुझे आशा है कि अंबाला के सभी लोगों तक हम ये बात जब रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz के माध्यम से पहुंचाएंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, और हमारी भी यही कोशिश है कि अंबाला के जितने भी लोग हैं वो एक एक करके हम उनको यहाँ स्टूडियो में बुलाएंगे, उनकी हम बात रिकॉर्ड करेंगे और सभी अंबाला वासियों तक उस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला कैंट का पहला FM स्टेशन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल जी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और आपका धन्यवाद भी कर रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।
1: नमस्कार, जय हिंद जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा। आज के मेहमान थे एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर व डायरेक्टर श्री अनिल कुमार यादव, रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: something.
1: नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: घी ताज महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन, अर अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन, अर मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: जी हाँ, आज सोमवार है, आप जहाँ भी है अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए बातचीत डॉक्टर सतपाल गुप्ता के साथ, जो शार सूत्र विशेषज्ञ हैं। आज की बातचीत का विषय है बवासीर, फिशर, फिस्चूला एवं अन्य गुदा रोग। आज के आमंत्रित मेहमान के साथ बात करेंगे भारत सोपोरी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज सोमवार है और लेके आया हूं स्वस्थ चर्चा का एक और एपिसोड। कई बार कुछ गुप्त रोग हमारी देह से ऐसे जुड़ जाते हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। शर्म या झिझक के कारण हम अपने अपनों से या डॉक्टर से बात नहीं करते। लेकिन याद रखिए, बीमारी छिपाने से नहीं, बताने से ठीक होती है। जब तक हम बोलते नहीं, तब तक इलाज में देर हो जाती है। इसलिए समय रहते सही सलाह लें, डॉक्टर से खुलकर बात करें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इससे शर्म से नहीं, समझदारी से बचाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कई बार लोग खुलकर चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। विषय है बवासीर, फिशर, फिशूला और अन्य गुदा संबंधी रोग। आज हमारे साथ प्रसिद्ध सर्जन और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी हैं, जो अंबाला के प्रसिद्ध शार सूत्र विशेषज्ञ है। डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन स्टूडियो रेडियो वितस्ता में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना संक्षिप्त सा परिचय दें ताकि हमारी श्रोता आपको अच्छे से जाने।
3: मैं आयुर्वेदिक सर्जन हूँ, अंबाला कैंट में महेश नगर जगह है, 136 महेश नगर में मेरा हॉस्पिटल है, बवासीर हॉस्पिटल के नाम से, गुप्ता बवासीर हॉस्पिटल। और मैं लगभग 42-43 साल से यही सर्विसेज दे रहा हूँ। और मैं बवासीर, भगंदर, फिस्चूला जिसको भगंदर कहते हैं, और फिशर, समस्त गुदा के रोगों का जितना भी इलाज है वो मैं सब करता हूँ। और जितनी देर से मैं काम कर रहा हूँ सब मेरा कार्य जो है सक्सेसफुल रहा है अभी तक। और हमारे वाले में जो मैं जितनी भी सर्जरी करता हूँ मैं क्षार सूत्रा से करता हूँ। इट इज ए मेडिकेटेड थ्रेड, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ हम इसको बनाते हैं। बेसिकली क्या है, जब भी मनुष्य के कोई ट्रीटमेंट करते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसकी जो है हम थ्रेड की एप्लीकेशन करते हैं। प्रकृति के बीच में हम वात, पित्त, कफ, हमारे तीन दोष हैं, इनको सम अवस्था में रहेंगे तो मनुष्य बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर किसी में भी थोड़ा बहुत भी जो है कमी आ जाती है कुछ भी है तो कोई भी रोग लग सकता है। इसी तरीके से बवासीर, भगंदर और फिशर, ये सब चीजें जो है दोष के ऊपर, तीनों दोषों के ऊपर आधारित हैं और उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती है। और उसी के अनुसार जो थ्रेड क्षार सूत्र हम बनाते हैं, डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं हम, तो मतलब मनुष्य की प्रकृति के अनुसार जो हम क्षार सूत्र लगाते हैं। एंड इट इज ए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। और हमारे ट्रीटमेंट के बीच में दोबारे से होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि बवासीर क्या होती है और इसके मुख्य कारण क्या है।
3: बवासीर एक गुदा का रोग है जिसके बीच में मनुष्य को जो हमारी जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं, फूल करके बढ़ने लग जाती हैं और उनमें से कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यही एक बवासीर है।
1: जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके जो मुख्य कारण है वो क्या है।
3: मुख्य कारण इसका कॉन्स्टिपेशन है
1: जी।
3: हमारा गलत तरीके से रहन सहन है, हमारे जो दिनचर्या है उसके बीच में जो कभी कमी आ जाती है। जैसे आप जो है पहले टाइम में तो आप घोड़ों के ऊपर चलते थे
1: जी।
3: बड़े उबड़ खुबड़ जगह में चलते थे, नीचे प्रेशर पड़ता था, उसकी वजह से नसें फूल जाती थी, बवासीर बन जाती थी। आजकल लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर भागे जाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कारों में जाते हैं, बड़ी सड़कें टूटी हुई, साइकिल के ऊपर जाते हैं कुछ लोग। इस तरीके से जो है नीचे प्रेशर पड़ता है वेन्स के ऊपर या आर्टरीज के ऊपर, उसकी वजह से बवासीर होती है। दूसरा कारण ये भी है कि जेनेटिक, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी वो आ सकती है, और उसके बीच में क्या होता है उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कोई ठीक होता, बवासीर का कोई ही ऐसा केस होता होगा जो कोई ठीक ना हो। इसके ठीक करने के दो तरीके हैं, हम मेडिसिन से भी उसको ठीक कर लेते हैं और कईयों में सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। मैंने जो कॉन्स्टिपेशन बताई है, कब्ज, ये रैशनैलिटी उसके साथ है
1: जी।
3: जो जिस किस्म का हम भोजन लेते हैं
1: जी,
3: अगर उससे कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो डेफिनेटली इसके बीच में बवासीर के बीच में वो अवॉइड करना चाहिए
1: जी।
3: अगर हम पानी की मात्रा कम लेंगे उससे भी कब्ज रहेगी, वो भी एक बवासीर का कारण हो सकता है। नेचुरली आम आदमी कम से कम 3 लीटर पानी उसको 24 घंटे में कंज्यूम करना चाहिए
1: जी।
3: अगर वो कंज्यूम करता है कॉन्स्टिपेशन के कारण, उसका जो कारण कुछ जो पानी की वजह से है वो कुछ कम हो जाता है उसके बीच में।
1: जैसे आपने अभी घोड़े की बात की या बाइक की बात की, तो इसका मतलब ये है कि अगर ज्यादा देर तक एक जगह बैठा जाए क्या वो भी इसका कारण हो सकता है?
3: ये सेडेंटरी लाइफ हो जाती है उसके बीच में, हो सकता है वो भी कॉन्स्टिपेशन को बुलावा देने वाली बात है
1: जी।
3: और एक सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी लोग हैं आज के टाइम के बीच में, लोगों के बीच में मोबाइल देखने की, अखबार पढ़ने की ये आदत बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, टॉयलेट के बीच में जाते हैं और वहां बैठ करके कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी अखबार पढ़ रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, और वहां ज्यादा से ज्यादा समय बैठते हैं, और बैठने के साथ ही वो नीचे प्रवाहन करते हैं, जोर लगाते रहते हैं। जब वो जोर लगाते हैं तो खून की नसें फूल जाती हैं, और वो भी एक बवासीर का मेन कारण है।
1: ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और बात पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, वजन बढ़ना क्या इसका एक कारण हो सकता है?
3: मोटापे के साथ इसका कोई ज्यादा लिंक नहीं है
1: जी।
3: मेन तो ये एक पतले आदमी को भी होगी, मोटे आदमी को भी हो जाएगी,
1: किसी को भी हो सकता है,
3: किसी को भी ये हो सकता है।
1: जो
3: अगर हमारे जीवन शैली के बीच में कुछ कमी आती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, पानी कम ले रहते हैं, हमारा खान पीन ठीक नहीं है, खाने पीने से मतलब क्या कि हमारे जो दोष है वात पित्त कफ असम अवस्था में हो जाते हैं, जब असम अवस्था के बीच में होंगे तो वो नुकसान करके बवासीर को पैदा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बारे में इस बदलते दौर में कितने जागरूक हैं लोग, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोग ज्यादातर बात नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है?
3: जो पहले समय हुआ करता था उस टाइम में लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं थी
1: जी।
3: वो आपस में बात भी नहीं करते थे
1: जी।
3: अपने घर में भी नहीं बात करते थे, डॉक्टर से भी नहीं बात करते थे, और दोस्तों के बीच में भी कभी बात नहीं करते थे। लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, वो कुछ बात करने लगे हैं। कई बार अपने जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ एक के फ्रेंड्स लेके उनको आ जाते हैं, कुछ एक के जो है रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स वो लेके आते हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत कम है। लोग इससे जागरूक नहीं है, पहले से तो बेटर है अब, लेकिन अभी भी बहुत कम है। लोग इसको छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते, और इसकी वजह से वो उनकी बीमारी बढ़ जाती है कई बार।
1: अब इस कार्यक्रम के माध्यम से अंबाला के श्रोताओं को, जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि अगर इस तरीके की कोई समस्या होती है तो बिना संकोच के उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए?
3: देखिए, अगर किसी को ऐसी समस्या है और वो अपने परिवार वालों को नहीं बताना चाहता है
1: जी,
3: तो उसको फ्रेंड सर्कल में जरूर बतानी चाहिए। फ्रेंड सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसमें आप हर किस्म की बातचीत कर सकते हैं
1: और उसका समाधान भी
3: मिल जाता है
1: जी।
3: अगर आप पेरेंट्स को बताओ, अपने परिवार के मेंबर्स को बताओ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अपने श्रोताओं को ये चीज नोट कर लें, अगर पेशेंट को बीमारी शुरुआत के बीच में पता चल जाती है और डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें ऑपरेशन के बगैर दवाइयों से ठीक हो जाता पेशेंट। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है, क्योंकि जितना भी हम क्षार सूत्रा का काम कर रहे हैं ये आचार्य सुश्रुत जी की सर्जरी देन है हमारे पास, उन्होंने भी लिखा है कि अगर बीमारी नवीन है, नूतन है, शुरुआत के बीच में है, तो वो औषधि के साथ ठीक हो सकती है। बवासीर की स्टेजेस जो हैं, 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर वो फर्स्ट डिग्री के बीच में, इनिशियल स्टेज के बीच में हमारे पास आ जाता है तो मेडिसिन से 100% क्योरेबल है
1: जी।
3: अगर वो फर्स्ट स्टेज निकल गई है, फिर अगर हम कोई भी मेडिसिन दें, कोई भी दवाई खाएं, कोई कहता है इसमें केले के साथ दवाई खा लो, कोई कहता है इसके लिए आप ये खा लो वो खा लो, कोई दूध के साथ, कई तरीके बता देता है लेने का
1: जी,
3: लेकिन वो नहीं ठीक होती। उसके बीच में तो समय वेस्ट करते हैं आप। कोई ऐसी दवाई भी नहीं, आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं है जो उसको जड़ से खत्म कर दे अगर फर्स्ट डिग्री निकल जाती है। वो है कि ब्लीडिंग बंद हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर होने लगेगी। फिर उसका जो परमानेंट रेमेडी है वो क्षार सूत्रा के साथ सर्जरी है।
1: यानी कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें अगर हमें कोई भी ऐसी समस्या होगी तो हमें सबसे पहले बिना समय गवाए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
3: उनको डॉक्टर के साथ संपर्क करेंगे तो उनका, अगर वो जैसे इनिशियली भी आगे तो दवाई से ही वो साध्य हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने क्षार सूत्र की बात की, आपसे जानना चाहेंगे कि क्षार सूत्र क्या है एक आम जन के लिए।
3: क्षार सूत्र जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ एक थ्रेड तैयार किया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच में डॉक्टर पीजे देश पांडे जी हुआ करते थे, उन्होंने क्षार सूत्र को जो है शुरू किया था। पुरानी पद्धति को उन्होंने दोबारा से शुरू किया था जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे
1: जी।
3: वो इंडिया के बीच में फर्स्ट आदमी है जिसने इसको क्षार सूत्र को शुरू किया था। जब वो शुरू हुआ तो उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के बीच में अपने केस को रिप्रेजेंट किया और इंडिया के बीच में 6 सेंटर, बड़े सेंटर जैसे पीजीआई, एम्स वगैरह, इस तरह के 6 सेंटर जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अलॉट किया था। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए मॉडर्न सर्जरी और क्षार सूत्र सर्जरी के लिए उन्होंने वो एक ब्रांच बना दी सब हॉस्पिटल्स के बीच में। तो उसके बीच में जब इसके जो ट्रायल हुए तो हमारे क्षार सूत्र के रिजल्ट जो है 96.4% आए थे, जो कि बहुत ज्यादा है, जबकि मॉडर्न सर्जरी के बीच में इसके रिजल्ट कम थे
1: जी। क्या बवासीर हमेशा ऑपरेशन से ही ठीक होती है डॉक्टर साहब?
3: मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इनिशियल स्टेज के बीच में आ जाता है, फर्स्ट के बीच में, शुरुआत के बीच में आ जाता है, तो मेडिसिन से ठीक हो जाती है। अदरवाइज कोई कहे मैं आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हूँ, मैं दूध पी के ठीक कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिपेशन को दूर कर रहा हूँ, लेकिन वो समय पास करने वाली बात है। अगर कहो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, कभी ठीक नहीं होती जब तक कि उसको ऑपरेट नहीं करते। हाँ, इनिशियल स्टेज के बीच में डेफिनेटली ठीक होती है।
1: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं फिशर की। ये भी अक्सर सुना जाता है, फिशर क्या है?
3: फिशर लैट्रिन का रास्ता टाइट हो जाता है
1: जी,
3: और उसमें जख्म हो जाते हैं, कट आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी उसका कारण हो सकता है। स्त्रियों के बीच में डिलीवरी के बाद हो जाता है ये
1: जी।
3: तो इससे बहुत से कारण है जो मैंने अभी भी बताया था, गलत खान पान हो गया है, कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, आप लैट्रिन के बीच में बैठे हैं, जख्म प्रेशर पड़ पड़ के नीचे जख्म हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो इसके बहुत से कारण है, मुख्य कारण तो यही है इसके। उससे क्या है कि हमारे वातपित्त कफ दूषित हो जाते हैं, उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन हो, और होने के बाद फिर ये फिशर की बीमारी हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि इसका जो लैट्रिन का रास्ता टाइट हो जाता है और कई बार उसमें जख्म हो जाते हैं, जख्म होने के बाद कई बार उसमें छोटा सा मांस बाहर नजर आने लग जाता है, उसको फिशर बोल देते हैं। और मेनली उसके बीच में सिम्टम रहते हैं कि लैट्रिन जाने के बाद मरीज को काफी समय तक दर्द रहता है। शुरुआत के बीच में थोड़े टाइम के लिए दर्द हुआ, 5 मिनट के लिए, बढ़ता 10 मिनट के लिए, कोई एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको 2-3 घंटे तक लैट्रिन जाने के बाद दर्द होता है। जब उसको दर्द होता है वो डर के मारे लैट्रिन भी नहीं जाता, लैट्रिन को रोकता है। लैट्रिन को रोकने से कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक वो मल जो है गुदा के बीच में पड़ा रहेगा, रेक्टम के बीच में पड़ा रहेगा, वहां रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी पानी की
1: जी।
3: पानी बॉडी के बीच में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी सोख लेगी उसको
1: जी।
3: उसके बाद वो मल फिर सूख जाएगा, सूखने के बाद कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी,
1: यानी कि समस्या जो है वो
3: और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी,
1: और बढ़ती चली। तो क्या फिशर को पूरी तरह से रोका जा सकता है?
3: फिशर के लिए तो हम मेडिसिन दे करके जो छोटे मोटे फिशर है वो मेडिसिन के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं
1: जी।
3: जिनके बीच में स्किन का कोई टैग बाहर नहीं है उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है दवाई के साथ। अगर मान लो उसके बीच में वो बार बार तकलीफ हो रही है, दवाई देने के बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर हो गया, फिर रिकरेंस होती रहती है, बार बार होता है, तो उसको ऑपरेट करवा लेना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी ने बताया कि हमारी जीवन शैली इस बीमारी के लिए सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर हमारा खान पान सही नहीं है, अगर हमारी दिनचर्या सही नहीं है, अगर हम कम से कम 3 लीटर पानी दिन में नहीं पीते हैं, तो हम इस विषय पर डॉक्टर साहब से बात जारी रखे हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर साहब का एक मनपसंद गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी के साथ, जो क्षार सूत्र के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अब बात करना चाहेंगे फिस्टुला के बारे में। ये शब्द थोड़ा डरावना सा लगता है, ये क्या बीमारी है?
1: फिस्टुला जो है एक बहुत टेढ़ी बीमारी है, जिसका इलाज क्षार सूत्र के साथ संभव है। आमतौर पर देखा कि ओपन सर्जरी के बीच में बार बार होता रहता है, तो क्षार सूत्र से ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। सबसे पहले मैं इससे पहले कि कुछ इसके बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि फिस्टुला होता क्या है।
0: जी,
1: फिस्टुला जो है गुदद्वार, इसके 2 सेंटीमीटर दूर तक एक फुंसी हो जाती है, फोड़ा जिसको बोल देते हैं, और वो उसका एक रास्ता जो है लैट्रिन के रास्ते में खुलता है, और एक रास्ता वो बाहर जो फोड़ा नजर आ रहा है। एक ये इतनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसका एक रास्ता लैट्रिन के रास्ते में खुल रहा है, दूसरा स्किन के ऊपर लैट्रिन के रास्ते के 2 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में मिलता है, इसको फिस्टुला बोल देते हैं। कई बार क्या होता है कि फिशर की वजह से भी फिस्टुला हो जाता है, पाइल्स की वजह से फिशर हो फिस्टुला हो सकता है, हमारे खान पान की वजह से भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, नॉन वेज अगर हम ले लेते हैं, कुछ छोटी मोटी कार्टिलेज, इसको हड्डी बोल देते हैं, बारीक सॉफ्ट हड्डी जो है उसको कार्टिलेज बोल देते हैं, नीचे आकर के अगर वो गुदा के बीच में आकर के कोई जख्म कर देती है, वहां इन्फेक्शन होकर के फोड़ा बन जाता है, जो कि लैट्रिन के रास्ते वो वहां से निकल के फोड़े के इन्फेक्शन हो करके बाहर लैट्रिन के रास्ते को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है और स्किन के ऊपर वो एब्सेस बना लेता है, ये फिस्टुला हो जाता है।
0: तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर समय रहते, जैसे अभी हमने बात की फिशर की, अगर समय रहते उसका इलाज ना हो तो क्या वो फिस्टुला के लिए एक रास्ता बना लेता है?
1: अब जब से क्षार सूत्र आया है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव हो गया है।
0: जी,
1: पहले समय के बीच में, पुराने समय के बीच में फिस्टुला जब होता था, पस भर जाती थी, बहुत से लोग इसी की वजह से मर जाते थे। लेकिन जब से सर्जरी आई है, कोई भी सर्जरी, मे बी ओपन सर्जरी, मे बी क्षार सूत्र सर्जरी, ये इंसिडेंस बहुत कम हो गए हैं। इसमें पस भर जाती है, उसकी वजह से पेशेंट्स को सेप्टिक हो जाता है कई बार, तो एक घातक बीमारी रहती है।
0: यानी कि समय रहते अगर किसी भी बीमारी का समाधान किया जाए, इलाज किया जाए, डॉक्टर के पास डिस्कस किया जाए, या अगर क्षार सूत्र का ऑपरेशन किया जाए, तो समस्या का समाधान किया जा सकता है,
1: 100% किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, कई बार लोग इन रोगों को लेकर घरेलू नुस्खे अपनाते हैं या इंटरनेट से इलाज ढूंढते हैं, क्या ये सही होगा?
1: देखिए, फिस्टुला की पोजीशन ये होती है, कई बार उसमें जो ग्रेनुलेटेड टिश्यू होता है उस पाइप के बीच में, फिस्टुला ट्रैक के बीच में, वो ड्राई कर जाता है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होती, लेकिन रास्ता वहीं पड़ा रहता है, पस उसमें आती नहीं। पेशेंट सोचता कि मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने इंटरनेट से देखा था, ये दवाई खा ली, मेरे डॉक्टर ने ये दवाई दे दी, मेरे घर वालों ने मेरे को ये दवाई दे दी, लेकिन वो उसका परमानेंट रेमेडी नहीं है। कुछ समय के बाद, साल के बाद, 6 महीने बाद, महीने बाद, 15 दिन के बाद, 2 साल के बाद, वो फिर हरा हो जाता है, उसके बीच में से फिर पस आने लग जाती है। जब तक कि उसको जो हम ऑपरेट नहीं करते, वो ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बीच में इसको ऑपरेशन के साथ भी ठीक करना बहुत मुश्किल है, बार बार होता रहता है, और कई बार तो इंटेस्टाइन के बीच में, हमारी आंतड़ियों के बीच में कहीं पे भी इन्फेक्शन होकर के, जैसे अपेंडिक्स के बीच में इन्फेक्शन हुई है, वहां का फिस्टुला भी जाके लैट्रिन के रास्ते में निकल जाता है कई बार, जो कि बहुत डेंजरस है, और वो उसको क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसको समय रहते इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए।
0: यानी डॉक्टर साहब, आम जिंदगी में जो हमारी दिनचर्या है, उसमें एक सरल सी बात मुझे जो समझ आई वो ये है, जो हमारा पेट है वो हर दिन साफ होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन तो होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो बवासीर, फिशर, फिस्टुला, कोई भी बीमारी इसमें हो सकती है।
0: तो एक और हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनका अगला पसंदीदा गीत कौन सा है।
1: देखिए, मैं आपके यहाँ स्टूडियो में आया हूँ, उसके लिए तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अगर आप हमारे पसंद का भी गीत सुनाते हैं तो उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। तो अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए, जीना यहाँ मरना यहाँ, अगर आप पॉसिबल हो सके तो।
2: जीना

0: ये इस कार्यक्रम का अंतिम भाग है। हम डॉक्टर साहब से कुछ प्रश्न पूछेंगे जो हमारे पास हमारी श्रोताओं की ओर से आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारे श्रोता जानना चाहते हैं, क्या बवासीर होने पर दूध या दही खाना चाहिए?
1: बिल्कुल लेना चाहिए। बवासीर के लिए दूध वगैरह देंगे तो कॉन्स्टिपेशन कम होगा। कुछ लोगों को दूध फिट नहीं बैठता तो वो छोड़ दें। दही को तो बिल्कुल हर बीमारी आपका जो है, बवासीर हो, भगंदर हो, फिशर हो, हर चीज में काम करेगा, लेना चाहिए।
0: दूसरा प्रश्न ये है कि क्या फिस्टुला का इलाज हमेशा ऑपरेशन से ही संभव है?
1: डेफिनेटली करना चाहिए। शुरुआत के बीच में अगर होता है तो इन्फेक्शन वगैरह को क्योर करने के लिए कुछ दवाइयों से का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन मैंने देखा वो कभी ठीक हुआ नहीं है। वो चार सूत्रा सर्जरी ही उसके लिए फिट है।
0: एक और प्रश्न है, क्या महिलाएं भी इन रोगों से प्रभावित होती हैं?
1: महिलाओं के बीच में जो फिस्टुला है पुरुषों के मुकाबले में काफी कम रहता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन होता उनमें भी है। उनके बीच में कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के बाद जो है फिशर हो जाता है, फिशर के बीच में फिस्टुला हो जाता है। एक तो उनका मेन कारण वो होता है। दूसरा कारण ये होता है कि वो बच्चों में लगी रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको, और वहां से कोई अगर कोई इन्फेक्शियस पार्ट होकर कुछ भी वजह से कोई जल वहां से छिल जाता है, अंदर ग्लैंड्स होते हैं लैट्रिन के रास्ते के बीच में, एनस के बीच में
0: जी।
1: जो एनस के बीच में अगर छिल करके वहां पे कोई इन्फेक्शन हो जाए वो उसका फिस्टुला का बहुत बड़ा कारण है। ये उसके बीच में भी एक माध्यम बन सकता है।
0: इसके साथ जुड़ता एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। जैसे हमने शुरुआत में बोला कि लोग बहुत सारे इस बीमारी के लिए घर में या बाहर किसी से बात नहीं करते, अब खास करके अगर किसी महिला के साथ ऐसी समस्या है, क्या पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं ये बात डॉक्टर से या अपने दोस्तों से या परिवार से कर पाती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है?
1: मेरा अनुभव ये कहता है कि वो किसी से भी बात ना करना चाहती सिवाय अपने हस्बैंड के
0: जी।
1: अगर लड़की है तो वो अपनी माँ से बात कर सकती
0: जी।
1: करती है
0: जी।
1: पहले समय में ऐसा नहीं हुआ करता था, बच्चे ऐसी उसको बात को दबा के ले जाते थे, रह जाते थे, उनकी जिंदगी ऐसे चलती थी और बीमारियां भयानक रूप ले लेती थी। लेकिन कुछ सीनरी आकर के चेंज हुआ है कि उसके बीच में कुछ बेटरमेंट हुई है कि ये अब वो आपस में बातचीत करने लगी है, जिसका कि बेनिफिट उनको होता है।
0: इस सवाल के जवाब में मैं अपने श्रोताओं को ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी इस तरीके की गुदा की बीमारी है तो वो जरूर उस विषय में बात करें और उसको पेंडिंग ना छोड़ दें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम अपने शरीर के साथ ना इंसाफी करते हैं। हमें अपने परिवार के सदस्यों से बात करनी चाहिए या सीधा ही हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक व्यक्तिगत प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये चार सूत्र की चिकित्सा आप 40 साल से ज्यादा से कर रहे हैं,
1: हाँ जी,
0: क्या आप ये पद्धति किसी और को देना चाहेंगे या दी है?
1: इसके संदर्भ में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सालों से 10-15 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे हिंदुस्तान में गुरु का दर्जा मिला हुआ है
0: जी।
1: और उसमें जो BMS डॉक्टर्स वगैरह डॉक्टर्स होते हैं, ये MD डॉक्टर्स हैं, उनको क्षार सूत्रा के लिए ऑल इंडिया कंपटीशन टेस्ट होता है, तो कुछ लोगों को इंडिया के बीच में, बहुत कम लोग हैं जिनको गुरु का दर्जा मिला है, उनमें से एक नॉर्दर्न इंडिया में मेरा नाम भी है
0: जी।
1: तो ऑल इंडिया कंपटीशन टेस्ट करने के बाद उनमें जो टॉप के बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनमें से किसी डॉक्टर गुरु पे 2 स्टूडेंट, किसी पे 3, ऐसे करके भेज देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
0: जी,
1: राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के बीच में। तो ऐसे ही 2010 से मेरे पास भी 2 स्टूडेंट आते हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से 1 साल में अपना सीख के जाते हैं और अपना अध्ययन कर

0: हैं ताकि आने वाले दिनों में भी वो आगे अपने समाज की सेवा कर सके।
1: देखिए ये मैं आपकी सारी बात सारी सहमत हूँ, जो मेरा जज्बा है सिखाने का वो मुझे बहुत खुशी देता है जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ, ताकि कम्युनिटी की और सेवा हो सके। मैं बच्चों के माध्यम से भी लोगों की सेवा जो है इस कम्युनिटी की सेवा करने का इच्छुक रहता हूँ, और ये जो है मेरे स्टूडेंट्स के माध्यम से बड़ा अच्छा लोगों को सुकून मिलता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि ये भी एक आप समाज सेवा करते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप ये समाज सेवा करते हैं ताकि हमारा समाज स्वस्थ रहे। आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आपसे यानी डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी से कोई संपर्क करना चाहे तो आपसे कहां संपर्क किया जा सकता है, कौन सा समय होता है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पेशेंट्स पूरे भारतवर्ष में कहां कहां से आते हैं।
1: हमारे पास जो पेशेंट्स है सारे हिंदुस्तान से आता है
0: जी,
1: फॉरेन से भी काफी पेशेंट्स आते हैं, और अगर कोई हमारे से संपर्क करना चाहता है, हरियाणा में अम्बाला कैंट जगह है, अम्बाला कैंट में महेश नगर एरिया है, जो महेश नगर एरिया में महेश नगर पानी की टैंकी है उसके पीछे गुप्ता बवासीर हॉस्पिटल के नाम से मेरा हॉस्पिटल है और वो हर रोज खुलता है। टेलीफोन नंबर मेरा है 9416308585, एक नंबर मेरा यह 9416308585, दूसरा नंबर मेरा है 8901100999, मेरे से किसी भी समय आप बात कर सकते हैं, जो हमारा डे टाइम में समय है कभी भी बात किया जा सकती है। अगर आप वैसे भी नहीं भी आना चाहते तभी भी अगर कोई संपर्क करके अपने बीमारी के बारे में हमारे से पूछना चाहता है वो कभी भी पूछ सकते हैं।
0: बहुत ही उपयोगी जानकारी के लिए डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी आपका हार्दिक धन्यवाद। आज की स्वस्थ चर्चा में हमने सीखा कि बवासीर, फिशर और फिस्टुला जैसी बीमारियां भले ही असुविधाजनक हो लेकिन इलाज पूरी तरह से संभव है, बस जरूरत है समय पर सही डॉक्टर से परामर्श करने की। अंत में आप यहां आके आपको कैसा लगा, आप हमारी श्रोताओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज।
1: देखिए मैं आपके स्टूडियो में आया हूं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका जो FM 90 इसके माध्यम से हमारे सब श्रोताओं को जो है बेनिफिट होगा, तो ये आपका जो स्टूडियो है लोगों को कितनी सेवा कर रहा है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और यहाँ के भी बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके साथ ही मैं श्रोतागण को और आपको नमस्कार, धन्यवाद।
0: और मैं सभी श्रोताओं से यही कहूंगा, शरीर की हर समस्या को छुपाएं नहीं, समझें और इलाज कराएं, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। इसी शुभ संदेश के साथ हम लेते हैं आज के इस कार्यक्रम से विदा। अगले हफ्ते हम फिर किसी और विषय पर किसी और विशेषज्ञ से बात करेंगे और आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और हम आपको डॉक्टर साहब के एक और गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
1: धन्यवाद।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत बवासीर, फिशर, फिस्चुला एवं गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतपाल गुप्ता के साथ की गई बातचीत आपने सुनी। सहयोग गिरनीत दास का, एडिट, रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विस्था की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी, ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला गेट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: होगा उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दुनिया।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही दलज में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर। क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल R.D. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। ४०० साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहाँ तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहाँ बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वीं सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्ही मीनारों को देख कर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जाने। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला गेट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजान FM नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीद बगत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: पेश है कार्यक्रम सरगम, अंक एक, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
3: पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ किरणी। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं पतिता फिल्म के गीत के साथ, जिसको स्वर दिए हैं लता मंगेशकर ने, लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप फिल्म भाभी का गीत सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था चित्रगुप्त का और बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। लीजिए अब सुनिए साथी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत शकील बदायूनी का और संगीत दिया है नौशाद ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म रात और दिन से, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गाया है लता मंगेशकर और मनाडे ने, और इसके गीतकार है शैलेंद्र।

अब हम आपको सुना रहे हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म का गाना, जिसको गाया है बंसरी सेन गुप्ता ने और जिसके गीतकार है रविंद्र जैन और संगीतकार भी है रविंद्र जैन।

अब आपको सुनाती हूँ फिल्म वक्त का गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। संगीतकार है रवि और गीतकार है साहिर लुधियानवी।

प्रोग्राम का अगला गाना है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म गुमराह से, जिसका म्यूजिक दिया है रवि ने और जिसके बोल लिखे हैं साहिर ने।

पेश है मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, फिल्म पत्थर के सनम से।

अब पेश है फिल्म एक नजर का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पेश है गाना पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 1, प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग व रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सफर है फिल्मी गीतों का। तय करेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। नमस्कार, आदाब। सहर होते ही कोई हो गया रुखसत गले मिलकर, फसाने रात के कहती रही टूटी हुई चूड़ी।

दर्द जगता है अक्सर दिल के इस नाजुक कोने में, जहां कभी प्यार पलता था सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां से तुम्हारा गुजर हुआ, वहां के रास्तों को तुमने महकाया, वहां की वीरानी को गुलजार किया और वहां के फासलों को तुम्ही ने मिटाया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही ने दवा। अब यहां हमारे तन्हाइयां पलती हैं, थाम लेती हैं रुसवाइयां दामन, और तुम्हारी याद में ये आंखें अश्कबार रहती हैं। जगता है दर्द अक्सर इस दिल के कोने में।

फिर बरसता। भीग जाती ये खामोश चिनार, शायद बोल भी पड़ते, मुस्कुराते भी, और अपनी चुप्पी तोड़ लेते। मैं इनसे लिपटता, अब की बार इनके सायों में उम्र गुजारता। शायद गुजरे वो पल याद आते, जो कभी भुलाए नहीं जाते। क्यों न बिस्तर की सिलवटों को

ये मौसम है तुम्हारी यादों का, सावन का ही महीना था जब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीग चुके थे तुम्हारे कब कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कदे आदम जिस्म, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी। शायद अपना दर्द बयां कर रही थी।

मेरी पनाहगाहों में जो तुम ठहरते ता उम्र, शायद तुम्हारी यादों का मौसम खिल उठता मौसमी बहार की तरह।

नाम तेरा और जिक्र तेरा ही होता है। इन पानियों में लहरें उठती तो हैं पर अक्स बिखरती नहीं। ये साहिल रहते हैं बेताब इन पानियों को छूने के लिए। यहां शाम होते होते मुरझा गए अब ये भीगे मौसम और छिप गए चुप हो गए बुलबुल। इन काली खामोश घटाओं ने घेरा है सितारों को चांद को मेरी परछाई को और तुम्हारी मुस्कान को।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और हमारे आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। अपना फीडबैक भेजने के लिए हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर, और आप हमारे साथ पूरे दिन रहते हैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम हर दिन बात करते हैं वो जो रखती है आपसे सरोकार। आज के लिए बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:50। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा दे रही है कि अब समय हो चला है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के आज के खूबसूरत सफर को यहीं पर विराम देने का। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भारत सोपोरी। दिन भर शुरू की महफिल दिलचस्प बातों और सर्व अधिक चर्चाओं के साथ आपका और हमारा साथ बेहद शानदार रहा, लेकिन विदा लेने से पहले आइए डालते हैं आज के दिन की सबसे विशेष और गौरवमयी ऐतिहासिक घटना पर एक नजर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जन्म जयंती। श्रोताओ, आज का दिन पूरे देश के लिए बेहद खास है। आज 6 जुलाई को हमारा भारत देश अखंड भारत के प्रणेता, प्रखर राष्ट्रवादी और महान शिक्षा विद्वान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर पूरा राष्ट्र उन्हें उनकी अद्भुत दूरदर्शिता, राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट समर्पण और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में दिए गए उनके अद्वितीय योगदान के लिए कृतज्ञता के साथ याद कर रहे हैं। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, ये नारा देकर उन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो एकता की वायर बह रही है, वो डॉक्टर मुखर्जी के सपनों और संघर्षों का ही परिणाम है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी, जो आज हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। ऐसे महान राष्ट्रनायक को रेडियो वितस्ता और पूरे देश की ओर से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से कोटि कोटि नमन। श्रोताओं, यादों के इस कारवां को आज यहीं समेटते हैं। कल फिर एक नई सुबह, नई ऊर्जा, नए गीतों के साथ आपका और हमारा यहां पर एक बार फिर मुलाकात होगी इसी फ्रीक्वेंसी पर। चलते चलते हमारी इस पावन नदी और हमारे इस स्टेशन वितस्ता को समर्पित और सभी श्रोताओं को समर्पित आज की ये विशेष पंक्तियां। आज की पंक्तियां यूं है, दिन ढल गया है अब खामोश रात का नजारा होगा। दिन ढल गया है अब खामोश रात का नजारा होगा, कल फिर इसी मोड पर नया सवेरा हमारा होगा। वितस्ता की लहरों सा बहता रहे सुरों का ये सफर, वितस्ता की लहरों सा बहता रहे सुरों का ये सफर, रेडियो वितस्ता पर कल फिर आपका और हमारा बसेरा होगा। जी हां, रेडियो वितस्ता फिर पर कल फिर आपका और हमारा बसेरा होगा। आज की ये जानकारी तैयार की हमारी टीम रेडियो वितस्ता ने, जिसमें मुख्य जो स्रोत है वो है सुश्री नैना और सुश्री कृष्णा। ये टीम रेडियो वितस्ता का एक प्रयास है। ये थी आज की पंक्तियां और आज का विषय। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 7 जुलाई 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम पूरे दिन के लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, और 7:05 पर होगा कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 6। इसका शीर्षक होगा परिवार और समाज।
कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आरजे किरने। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय होगा, एपिसोड 27 होगा। चेतावनी प्रस्तुत करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 आप सुनेंगे हमारे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला का एक नया एपिसोड जो आधारित है डॉक्टर आकिब जावेद के गजलों पर। कार्यक्रम एपिसोड 16 प्रसारित होगा 9:30। 10:05 पर होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। पेश करेंगे आरजे किरनी। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम गजल और 7:00 पुनः प्रसारण होगा नए कार्यक्रम का, जो है नए एपिसोड का, वितस्ता गीत माला कार्यक्रम के एपिसोड 16 जो आधारित है डॉक्टर आकिब जावेद के गजलों पर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा और अपना फीडबैक भी हमें भेजेंगे। 8:30 सुहाना सफर, हर दिन की तरह कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है, काश फुर्सत होती। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे और आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं उसके बारे में भी आप लिखेंगे। साथ ही अगर आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से अम्बाला की जनता को कुछ कहना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो आप जरूर अपने बारे में भी हमारे स्टूडियो के नंबर पर लिखें ताकि हम आपको आमंत्रण दे सके और आपसे बात हो सके। हमारा नंबर नोट कर दीजिए, हमारा स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। आप अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सब स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का हर दिन 6:00 से 9:00। मिलते हैं कल 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।